0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: आइए आइए, स्वागत है आप सभी का, है ना। स्माइल देखिए कितनी बड़ी वाली आती है, और मैंने कहा था ना एक वो वक्त आएगा जब आपको हर थर्सडे का इंतजार होगा। देखिए, इट इज नॉट अबाउट द टाइम एंड द डे, इट इज अबाउट दिस शो विच मेक्स इट एब्सोल्युटली स्पेशल, क्योंकि आपने भी एकदम टाइमली ट्यून इन कर लिया है टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा, यहां पर आपके साथ 90s वाली अंतरा, आप प्यार से मुझे बुला सकते हैं, क्योंकि शुरू हो चुका है मस्ती 90s मिक्सटेप। दैट इज राइट, वो शो जहां हम सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, उन गानों के आसपास की जो जिंदगी थी 90s वाले, उसे भी साथ साथ में याद करते हैं। कभी नोटिस किया है 90s में हमारे पास जो है बहुत ही कम लिमिटेड चीजें थी, पर उन कम चीजों से ही कितनी बड़ी दुनिया बना दी जाती थी। एक टेनिस बॉल से पूरा वर्ल्ड कप खेल लेते थे हम, एक कैसेट से पूरा समर वेकेशन निकल जाता था, एक साइकिल से पूरी कॉलोनी जो है वो नप जाती थी, और एक रेडियो से पूरी की पूरी दुनिया हमारी, वो भी इमेजिनेशन वाली। उस वक्त हैप्पीनेस एक्सपेंसिव नहीं होती थी, कभी स्कूल से आते वक्त ऑरेंज आइस कैंडी मिल गई तो लगता था कि भाई आज तो जैकपॉट ही लग गया, कभी फेवरेट गाना रेडियो पे बज गया तो दिन बन जाता था, कभी टीवी पे अनाउंस की हुई मूवी के बीच में लाइट यानी कि बत्ती नहीं गई तो फिर हमें लगता था आज तो मतलब कयामत ही, यू नो सम लकी डे इट इज राइट। और बॉलीवुड क्या ही कहने उसके, 90s बॉलीवुड ने तो हम सबको इतने सपने दिए, किसी को शाहरुख खान वाला रोमांस चाहिए आज की डेट में भी, किसी को माधुरी दीक्षित वाली स्माइल चाहिए, किसी को गोविंदा वाले डांस स्टेप्स चाहिए, और किसी को कुमार सानू की जो है आवाज में प्यार का मतलब चाहिए। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 90s को याद करते वक्त हम गैजेट्स या ब्रांड्स याद नहीं करते हैं, हम फीलिंग्स याद करते हैं, वो घर, वो गली, वो आवाजें, वो लोग, वो इंतजार, वो एक्साइटमेंट। और शायद इसीलिए 90s कभी पुराना नहीं लगता है, क्योंकि वो एक डेकेड नहीं, एक इमोशनल एड्रेस है। तो आज फिर से खोलते हैं यादों का वो मेटल वाला ट्रंक, जिसमें कहीं पुरानी रिपोर्ट कार्ड्स हैं तो कहीं कैसेट्स के कवर, कहीं क्रिकेट के स्कोर शीट्स हैं तो कहीं हम खुद ही वहीं पे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 90s वाला सफर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, 90s वाली यात्रा के साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा।
1: हाँ जी जी।
0: आधा केजी मसूर दाल।
1: जी जी।
0: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: आर यू रेडी?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
1: ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, पता नहीं, देखो देखो कौन होगा, कौन होगा? क्योंकि कॉलर आईडी तो बहुत बाद में आई थी ना। 90s की बात कर रहे हैं हम, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। एक रिंग में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती थी 90s में। ये जो आवाज थी वो कुछ ऐसी ही थी जो घर के किसी भी कोने से सुनाई दी जाए। दैट इज राइट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सबका अटेंशन जो है फिलहाल मैं वो फोन पे लाना चाहती हूँ। भाई घर पे भी जब फोन बजता था तो सबका अटेंशन वही जाता था ना कि ट्रिंग ट्रिंग, लैंडलाइन की वो जो रिंग होती थी, और उस रिंग के साथ आता था एक छोटा सा सस्पेंस, क्योंकि उस वक्त ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा कॉलर आईडी तो होता नहीं था, नेम स्क्रीन पे फ्लैश नहीं होता था, राइट, प्रोफाइल फोटो तो बहुत ही दूर की बात है। बस फोन बजता था और पूरे घर का गेसिंग गेम स्टार्ट हो जाता था कि शायद मामा जी होंगे, नहीं नहीं नहीं पापा का ऑफिस का कोई फोन होगा, अरे नहीं यार बुआ का फोन आया है, नहीं मासी का फोन आया है। 90s में हर फोन कॉल ना एक सरप्राइज पैकेज के जैसे होता था, जब तक रिसीवर नहीं उठाते तब तक कुछ पता ही नहीं। एंड ऑनेस्टली उस अनसर्टनिटी में भी कितना एक्साइटमेंट होता था ना कि कभी किसी दोस्त का जैसे कॉल आ गया, कभी किसी रिश्तेदार का कॉल आ गया, कभी रॉन्ग नंबर आ गया, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया, और कभी कभी वो कॉल जिसका पूरा दिन वेट किया जाता था। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज रिंग के पैटर्न से भी लोग प्रिडिक्शन करते थे कि दो रिंग देकर काट दिया तो पक्का। देखो ये सारी चीज़ें ना हम लोग इतने ज़्यादा प्रो हो रखे हैं उस टाइम से कि हमने तो सिग्नल डिसाइड कर लिए थे अपने टाइम में कि दो रिंग का मतलब ये, एक रिंग का मतलब ये। जैसे फोन सिग्नल्स डीकोड करने का सीक्रेट ट्रेनिंग जो हमने लिया हुआ है 90s में, और घर में भी रेस लगती थी, फोन बजते ही सभी उसी की तरफ भागते थे, राइट, कि पहले कौन उठाएगा, उसका जो है उस जो भी उठाएगा तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन की पावर उसके पास चली जाती थी कि फोन मेरे लिए है क्या। आज हम कॉल आने से पहले नाम देखते हैं, ठीक है, डिसाइड करते हैं कि रिसीव करना है कि नहीं करना है, मूड है नहीं है, लेकिन 90s में रिसीवर उठाना ही पड़ता था और हर बार एक नई पॉसिबिलिटी सामने होती थी। शायद इसीलिए 90s के लैंडलाइन कॉल्स इतने याद रहते हैं, क्योंकि उनमें कन्वीनियंस कम थी, क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी। और आज भी कहीं ऐसी घंटी सुनाई दे जाए लैंडलाइन की तो दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है कि अरे देखो तो सही कौन होगा। याद आए, बस यही तो काम है मेरा, बस 90s मिक्स टेप पर ये सारी बातें करने के साथ साथ बढ़िया बढ़िया 90s वाले गाने प्ले होते रहने चाहिए, बस मूड समा 3 घंटे कुछ ऐसा ही बंधा हुआ रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, सो स्टे ट्यून्ड। आओ वापस आओ।

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: And while we are also talking about those memories, 90s के दिनों वाली, भाई 90s के बॉलीवुड का भी बीच बीच में आते जाते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगी, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम बात करते हैं तभी आता है को, ओ, अच्छा ऐसा भी तो हुआ करता था। अब आपको लेकर जाना चाहती हूँ 90s के मूवी के टाइम पर। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी मतलब हीरो का बहुत ही एक एंट्री कराना होता था तो जूता पहले दिखाते थे और शक्ल बाद में जो सस्पेंस जो है क्रिएट किया जाता था, एक क्लासिक फॉर्मूला था उस टाइम का 90s के वक्त का कि हीरो आ गया है पर ऑडियंस को अभी उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, जूते। याद आया ना। सो कैमरा ग्राउंड लेवल पे होता था, स्लो मोशन वॉक, बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक, स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ जूते, एक कदम टक, दो कदम टक टक, तीन कदम टक टक टक, और मतलब थिएटर में सीटियां ही सीटियां, भाई चेहरा भी नहीं दिखाया अभी। और ये सिर्फ स्टाइल नहीं था मेरे दोस्त, फिल्म मेकिंग की टेक्निक थी। 90s डायरेक्टर स्टार की एंट्री को इवेंट बना देते थे, इसीलिए पूरा फेस इमीडिएटली रिवील नहीं किया जाता था, पहले वॉक होगी, फिर बॉडी लैंग्वेज होगा, फिर जूते दिखाए जाएंगे ताकि एंटिसिपेशन बिल्ड हो। और ऑनेस्टली उस वक्त जितने भी हमारे सितारे थे यानी कि स्टार्स थे, उनकी वॉक भी उनकी एक आइडेंटिटी होती थी। सनी देओल की वॉक अलग, शाहरुख खान की वॉक अलग, संजय दत्त की वॉक अलग, अजय देवगन की वॉक अलग। कभी कभी ऑडियंस सिर्फ वॉक देख के ही पहचान देती थी कि अरे ये तो हमारा हीरो है, शाहरुख खान है। और फिर जैसे ही कैमरा ऊपर आता फुल थिएटर का रिएक्शन होता। आज तो ट्रेलर रिलीज होते हैं, कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज होते हैं, सोशल मीडिया पे पहले ही सब कुछ रिवील हो जाता है, लेकिन 90s में हीरो की एंट्री को जेन्युइनली सेलिब्रेट किया जाता था। और उस एंट्री के लिए भी लाइटिंग स्पेशल, डस्ट भी स्पेशल, बैकग्राउंड स्कोर भी स्पेशल, और जूते सबसे स्पेशल। कभी पॉलिश्ड ब्लैक बूट्स, कभी चंकी से स्नीकर्स, कभी काउबॉय स्टाइल के शूज, मतलब फुटवेयर भी जैसे साथ साथ में एक्टिंग कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली 90s बॉलीवुड का कॉन्फिडेंस ही अलग था। आज फिल्म मेकर्स बोलते हैं कि भाई कहानी देखो, 90s वाले बोलते थे पहले एंट्री देखो सर। शायद इसीलिए आज भी जब कोई भी 90s की मूवी लगा के देखो तो मतलब लगता है कि यार ये सारी चीज़ तो हमें पता ही है, ये तो अब तो हमारे हीरो की एंट्री होने वाली है, कितना कनेक्ट करते हैं ना वो मूवी वापस, हमें पता है कि ये कौन है अभी भी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लाइक यस आ गया दिस इज द मोमेंट, बिकॉज वी फील दैट थिंग एट वेरी दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन। एंड इज इट मैजिकल, दैट्स द जादू ऑफ 90s, दैट वी फील द सेम फीलिंग आज भी अगेन एंड अगेन। स्टे ट्यून्ड।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: 40% off, 40% joy alukas,
3: 40% off, oh my god, let's go, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
5: Suna suna baba suna suna baba suna suna suna.
4: Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

नहीं नहीं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन वो चिपकाने के बाद हमको रियलाइज होता था कि टेढ़ा चिपक गया है और अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्या बात कर रही हो अंतरा? अंतरा बताएगी आपको, क्योंकि ये है मस्ती 90s मिक्स टेप रेडियो 24/7 लाइव पर। भाई स्कूल में प्रिपरेशन वाज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स 90s में। भाई स्कूल खुलने से पहले वो जो एनुअल इवेंट हुआ करता था, ना ना ना ना, स्पोर्ट्स डे भी नहीं, एनुअल फंक्शन भी नहीं, एग्जाम की तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। बुक्स को कवर करने का वो सीजन है ना। नई टेक्स्ट बुक्स जब घर आती थी कि डाइनिंग टेबल जो है एक टेम्पररी वर्कशॉप के जैसे बन जाता था। ब्राउन पेपर रोल्स, फिर सीजर्स, फिर ग्लू, ट्रांसपेरेंट टेप और एक साइड पे ये बुकों का पहाड़, दुखों का पहाड़ नहीं साउंड किया, लेकिन बुकों का पहाड़, पूरा ऑपरेशन चल रहा होता था, राइट। लेकिन असली चैलेंज ब्राउन पेपर नहीं था, असली चैलेंज था नेम स्लिप को परफेक्टली सीधा लगाना ऑन दैट नोटबुक और बुक विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। और उस व्हाइट नेम लेबल की इंपॉर्टेंस ही बिल्कुल अलग थी, क्योंकि स्कूल का नाम, स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन, सब नीटली लिखना और फिर सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट कि अब इस स्लिप को चिपकाना है। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ बस, ऐसे दिल टूटता था ना, या फिर बबल आ जाता है बीच में तो और भी ज्यादा बुरा लगता था। कुछ बच्चे तो स्केल से प्रेस कर करके एयर बबल्स जो है वो निकाल देते थे, जैसे कोई इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो। एंड पूरा साल उस कवर को देखना है, राइट। इसीलिए परफेक्शन जो है ना काफी कंपलसरी था। आजकल नोटबुक्स डायरेक्टली प्रिंटेड कवर्स के साथ ही मिल जाते हैं, तब हर बुक कस्टम मेड लगती थी और कवर लगते ही बुक सडनली ऑफिशियल सी फील आ जाती थी। नहीं, नया सेशन है, नई क्लास, का एक्साइटमेंट होती थी उस टाइम पे, नए टीचर होंगे, कौन बनेंगे आपकी क्लास टीचर एंड ऑल दोस थिंग्स, नई पॉसिबिलिटीज। कैसे हम लोग पहले से डिस्कस करने लगते थे ना कि अच्छा आप उस क्लास से हो, उस सेक्शन से हो, अभी कौन है आपकी क्लास टीचर एंड ऑल दोस थिंग्स। और उस फ्रेश ब्राउन पेपर की स्मेल भी यार, सच्ची में उफ, उसमें ना समर वेकेशन के एंड और स्कूल के स्टार्ट दोनों की फीलिंग हुआ करती थी। इसीलिए 90s के स्कूल के प्रिपरेशंस इतने याद रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई के लिए रेडी नहीं हो रहे, हम पूरे साल के लिए मेंटली रेडी होते थे। एंड ऑनेस्टली आज भी मतलब मुझे कहीं पर ऐसा ब्राउन पेपर, वाइट स्लिप ऐसा कुछ दिख जाता है ना, एनीवेज स्टेशनरी शॉप इज माय लाइक ड्रीम लैंड। मैं ऐसा बचपन कूद के बाहर आता है मेरा, आई कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ओवर देयर। बट देन या नेम स्लिप्स की बात अलग थी, नहीं अलग थी कि नहीं थी, आपने लगाए थे कार्टून वाले या फिर? मेरे तो बहुत टाइम तक नॉर्मल स्टैंडर्ड वाले जो है वही लगते हुए आए थे, कार्टून वाले या फिर थोड़े से फैंसी वाले काफी बाद में। और एक टाइम तो आया, आई थिंक क्लास 10th के बाद तो मतलब इट डजेंट मैटर, आप नेम स्लिप नहीं भी लगाओ तो चलेगा, इट्स लाइक द सीनियर काइंड ऑफ थिंग। 90s में भी यही था। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव, स्टे ट्यून्ड।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live. 75.

0: पैसों से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: कोई भी चीज, अभी स्टेशनरी की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, कोई भी नई चीज ना हम बहुत जल्दी यूज नहीं किया करते थे। आई थिंक दिस वाज लाइक काइंड ऑफ एम्बाइब्ड इन अस 90s के वक्त में। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। जैसे हमारी मम्मियां भी जो है कोई भी चीज को नया बहुत देर तक रखने, बहुत दिनों तक वो चले, तो इसलिए प्लास्टिक का कवर ही नहीं हटाती थी कि नहीं नहीं नहीं गंदा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं इसको ऐसे ही लगे रहने दो, और हम उसको प्लास्टिक कवर के साथ ही यूज किया करते थे। तो वो जो मम्मियां क्या करती थी वो हम पे ऐसे ट्रांसफर हुआ कि अगर हम नया इरेजर लेकर आए उसको हम बहुत ही ऐसे यूज करते थे कि नहीं नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं, नया नया मतलब न्यू थिंग्स फेल्ट प्रेशियस। एंड 90s के बच्चों के पास ये एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कुछ चीजें हम खरीदते थे यूज करने के लिए और फिर उसे यूज ही नहीं करते थे कि वो पुराना हो जाएगा। और इस लिस्ट का किंग था एटलीस्ट मेरे लिए इरेजर, नया इरेजर, एकदम क्लीन, बिल्कुल वाइट, एकदम शार्प कॉर्नर्स, और वो एक फ्रेश रबर वाली खुशबू जो है वो भी आती थी। देयर वाज दिस टाइम पीरियड जहां पे फ्लोरोसेंट कलर के नाम उसी ब्रांड के इरेजर्स आने शुरू कर गए। मुझे इतने पसंद थे वो, इतने फ्लोरोसेंट, नियॉन पिंक, नियॉन ये ग्रीन, बहुत ही कमाल लगते थे ये नियॉन ऑरेंज, यू नो हाउ मच आई लव ब्राइट कलर्स। सो नया इरेजर देखकर लगता था कि यार ये स्टेशनरी नहीं है यार, आर्ट वर्क है। फिर स्कूल का पहला दिन आता, नोटबुक ओपन, पेंसिल से हमने लिखना स्टार्ट किया, गलती भी हो गई, लेकिन नया इरेजर जो है ना यूज करने में ऐसा जोर आता था, ऐसा जोर, क्यों, अभी तो नया है ना पहले पुराना वाला खत्म करो। और वो पुराना इरेजर ठीक है ऐसा घिसा हुआ, कॉर्नर्स नहीं है, मतलब वो ग्रे हो चुका है, पर फिलहाल ड्यूटी पे वही रहेगा नया इरेजर रिजर्व बेंच पे बैठेगा। कल एक्चुअली ऐसा ही एक इरेजर मेरे फ्रॉम रैंडम चीज़ जो मैंने ऐसे ही मेरे ये ऑफिस की डेस्क में दिखा, एंड आई वॉज लाइक वाह, मतलब ये भी यूज़ किए मुझे काफ़ी टाइम ही हो गया। सो वेल 90s में न्यू थिंग्स को इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किया जाता था, उसे इन्जॉय किया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था। नई किताबें, नया पेंसिल बॉक्स, नए स्कूल शूज, और स्पेशली द न्यू इरेजर्स, कभी ट्रांसपेरेंट कवर्स के अंदर, कभी पेंसिल बॉक्स के स्पेशल कंपार्टमेंट में, जैसे उसको एकदम VIP गेस्ट का ट्रीटमेंट मिल रहा हो। आज हम पैकिंग खोलते ही उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब नई चीज मिलना खुद में एक इवेंट हुआ करता था, है ना। छोटी छोटी चीजें इतनी याद रहती है यार, इट्स लाइक लिविंग दोज मोमेंट्स, राइट। दिस शो इज ऑल अबाउट दैट। मस्ती 90s मिक्स टेप सुनते रहिए ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जी।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: डेनिम ऊपर भी और डेनिम नीचे भी। आपको लगता है ये आजकल का ट्रेंड है? नोप्स, लेट मी टेक यू बैक टू द 90s, क्योंकि ये है मस्ती 90s मिक्स टेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव 90s वाली यंत्रा।

के साथ है भाई, फैशन के रूल्स ना बहुत ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं हुआ करते थे उस टाइम में, जो है मुझे लगता था खुलापन बड़ा था फैशन के मामले में। सो 90s का बॉलीवुड का फैशन डिपार्टमेंट एक बात पे पूरा बिलीव करता था कि अगर डेनिम अच्छा लगता है तो और डेनिम पहनो। फिर पैदा हुआ द लेजेंडरी डेनिम ऑन डेनिम का लुक। आई ना करिश्मा कपूर की फोटो एकदम दिमाग में सामने, डेनिम शर्ट, डेनिम जैकेट, डेनिम जीन्स, कभी डेनिम कैप भी पहना देते थे। मतलब हीरो या हीरोइन को देख के लगता था कि भाई क्या मतलब फैशन पहना है या पूरा जीन्स का शोरूम निकल पड़ा है। सबसे अमेजिंग बात, उस वक्त किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, सबको लगता था कि भाई बहुत ही कूल लग रहा है। और इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड रीजन भी था। सो 90s के एक्शन और आउटडोर सीन्स में डेनिम बहुत पॉपुलर हुआ करता था क्योंकि कैमरा पे स्ट्रांग लगता था, वो ड्यूरेबल लगता था और एक्शन सीक्वेंसेस में स्टाइलिश भी लगता था। इसीलिए कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स डेनिम को मिक्स नहीं करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। सनी पाजी, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान सबने किसी ना किसी फिल्म में डबल डेनिम का फ्लैग जो है प्राउडली कैरी किया है। एंड सॉन्ग्स में तो नेक्स्ट लेवल, ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, खुली सड़क है, विंड मशीन चल रहा है, डेनिम जैकेट पहनी हुई है, बैकग्राउंड में गिटार, बस हीरो रेडी। एंड ऑनेस्टली 90s फैशन का कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग हुआ करता था। अब आजकल देखा जाए तो फैशन मैगजीन्स बोलेंगे कि यू हैव टू बैलेंस योर टेक्सचर्स, यू हैव टू कॉन्ट्रास्ट योर कलर्स, लुक एट द लाइंस। 90s बोलता था नहीं, और डेनिम डालेंगे हम तो। और हम कॉपी भी करते थे, जीन्स के साथ डेनिम शर्ट पहन के लगता था अब तो फुल एकदम बिंदास फीलिंग आ रही है। आई काइंड ऑफ स्टिल लाइक दैट डेनिम ऑन डेनिम काफी, इट्स जस्ट गिव्स यू सच अ गुड वाइब। And I have also, still date, I have it in my wardrobe. And I wear it as well. बहुत शौक से पहनती हूँ मैं। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर बेल, आपके जो है वार्डरोब में डेनिम और डेनिम होगा, बट देन हैव यू ट्राइड वेयरिंग इट लाइक हाल फिलहाल में, लेट मी नो 9159963। लेकिन फिलहाल चलेंगे एक डेनिम नहीं 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: दिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: नई चीजों को संजो के रखना, बात कर रहे थे ना हम इसमें टीवी भी शामिल है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। ऑफ कोर्स भाई, डेकोरेशन का मतलब और सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी हुआ करता था कि भाई उसको ना संभाल के रखना है। एंड इफ आई टॉक अबाउट टीवी, 90s के लिविंग रूम में वही एक चीज थी। हाँ, लेकिन वो सिर्फ टीवी नहीं था और टीवी के ऊपर का क्रोशे वाला कवर भी तो था, और उसके ऊपर वो वास और उसमें जो प्लास्टिक फ्लावर्स आजकल तो बहुत डिफरेंट है, फ्लैट स्क्रीन टीवीज एंड ये सारी चीजें जो है। अगर उस वक्त मतलब ऐसा कुछ आता तो कैसे हम लोग शौक हो जाते हैं। नहीं, हम वैसे भी टीवी देख के शौक हो ही गए थे, क्योंकि हमारे लिए वही इतना बड़ा चीज हो गया था कि टीवी सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं था। इट वॉज लाइक ड्रॉइंग रूम की शान है। और अगर आपके घर में टीवी है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट, तो पहले हमारे घर में टीवी नहीं था। इट वॉज मच लेटर जब हमारे घर में पहला टीवी आया, हम दूसरों के पड़ोसियों के घर में जाके टीवी देखते रहे। सो जो जिसके घर में टीवी है वो उसकी ना शान और शौकत बहुत ही ज्यादा मोहल्ले में अलग लेवल पे हुआ करती थी। और यही से मुझे याद आया कि वो व्हाइट क्रोशे का हैंडमेड कवर, कभी स्क्वायर का पैटर्न, कभी फ्लावर का डिजाइन, कभी साइड से वो लटकते हुए लेस, और उसके ऊपर केयरफुली रखा हुआ वो फूलदान जिसमें प्लास्टिक फ्लावर हुआ करते थे। अच्छा, कोई उस अरेंजमेंट को टच नहीं करता था, टीवी ऑन करना अलाउड, लेकिन फ्लावर्स हिलाना अलाउड नहीं है। उसको ऐसे फोल्ड करके उसके ऊपर रख दिया करते थे, क्योंकि वो बहुत डेंजरस टेरिटरी है। और जब घर में मेहमान आते, लिविंग रूम ऑटोमेटिकली इंस्पेक्शन का जोन बन जाता कि भाई टीवी क्लीन है, कवर सीधा है, फ्लावर्स ठीक जगह पे है कि नहीं है, चलो भाई सब चेक हो गया। क्योंकि 90s में डेकोरेशन जो है शो ऑफ नहीं होता था, केयर होता था। घर की हर चीज को प्यार से मेंटेन किया जाता था, टीवी कैबिनेट को पॉलिश किया जाता था, क्रोशे कवर को धोया जाता था, फ्लावर्स डस्ट फ्री रखे जाते थे। एंड ऑनेस्टली वो क्रोशे कवर्स भी कितने स्पेशल होते थे यार। कई बार तो नानी जो है उन्होंने खुद भी आई थिंक बनाया हुआ था। देयर वाज वंस अपॉन अ टाइम, एक एक स्टिच में जो प्यार होता था, पैटर्न में पेशेंस होता था, फिर वो टीवी के ऊपर प्राउडली डिस्प्ले भी होता था। अ लॉट ऑफ टाइम्स माय मॉम यूज्ड टू गो टू दीज हैंडलूम फेयर्स एंड ऑल, वहाँ से लेकर आती थी। आजकल इंटीरियर्स ना बहुत मिनिमलिस्ट टाइप का है, और तब इंटीरियर्स जो है ना बड़े पर्सनल हुआ करते थे। हर कॉर्नर में किसी का एफर्ट जरूर दिखता था, क्योंकि फर्नीचर और डेकोरेशन के बीच में लोगों का प्यार भी विजिबल हो ही जाता था। नहीं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर किसी बातें करती हूँ ना तो मुझे एकदम घर वाली फीलिंग आ जाती है। इट फील्स लाइक दैट आई एम बैक टू माय कानपुर में अपने घर में। एंड वो दीवारें स्काई ब्लू कलर की दीवारें थी हमारे घर में, एंड द पेंट वॉज नॉट द पेंट विच वी सी नाउ डेज। इट वॉज अ वेरी ग्लॉसी काइंड ऑफ पेंट। यू रिमेंबर पहले के घरों में इस तरह के पेंट्स बड़े होते थे, एंड वाइट एंड ब्लू कलर की दीवारें हुआ करती थी। हाय, वो दिन 90s के वो अमेजिंग दिन।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी.
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
5: Dum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: जब जब मैं यहाँ पर ये शो लेकर आती हूँ और अंत में मैं यही बोलती हूँ कि why it is just हफ्ते में एक दिन क्यों ये शो है, because this is the 90s वाला शो। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतराब के साथ। यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप एंड दिस इज अ वेरी 90s वाला थिंग कि भाई एक बार देखो फिर अगले हफ्ते तक आपको नए एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज वेटिंग मेड थिंग्स बिगर 90s में। एक्साइटमेंट का मतलब सिर्फ वो चीज नहीं होती थी कि जो मिल गई है, एक्साइटमेंट का मतलब होता था 90s में कि जो अभी मिलना बाकी है। एंड इस फीलिंग का किंग था टीवी के वो लेजेंडरी प्रोमोज कि अगले हफ्ते देखिए मूवी खत्म होने वाली है, सीरियल एंड होने वाला है और अचानक से ड्रामेटिक वॉइस आती थी अगले हफ्ते, बस पूरा घर अलर्ट मोड पे क्योंकि अब आने वाला है नेक्स्ट अट्रैक्शन। एंड प्रोमोस भी कितने पावरफुल होते थे, सिर्फ लाइक 15 या 20 सेकंड के, राइट? लेकिन इमेजिनेशन पूरे हफ्ते के लिए हमारा एक्टिवेट कर देता था वो, कि थोड़ा सा सीन दिखाया, थोड़ा सा म्यूजिक यू नो प्ले कर दिया, थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ दिया और बस एक पूरा हफ्ता उसी के बारे में सोचते सोचते निकल जाता था कि यार नेक्स्ट संडे वाली मूवी ना मस्त लग रही है, मस्त। अरे उस सीरियल में अब क्या होगा। कभी कभी प्रोमो एक्चुअल शो से ज्यादा एक्साइटिंग लगता था इफ यू एक्चुअली कम टू थिंक अबाउट इट, लेकिन फिर भी हम वेट करते थे क्योंकि 90s में एंटरटेनमेंट इंस्टेंट बिल्कुल भी नहीं था, ऑन डिमांड भी नहीं था, आपको उसके पास जाना पड़ता था, वो आपके पास नहीं आता था। और इसीलिए एंटिसिपेशन भी एक्सपीरियंस का पार्ट होता था। आज ट्रेलर देखो, फिर टीजर देखो, फिर बिहाइंड द सीन्स देखो, फिर काउंट डाउन देखो, फिर रिलीज देखो, तब एक प्रोमो और उसके बाद पेशेंस। ऑनेस्टली उस इंतजार में भी कितना मजा था, है ना? स्कूल में डिस्कशन चल रही है, घर में प्लानिंग चल रही है, उस टाइम बाहर मत जाना, पूरा फैमिली कैलेंडर एडजस्ट हो रहा है उसके आजू बाजू, है ना? शायद इसीलिए 90s की एंटरटेनमेंट मेमोरीज आज भी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि हम सिर्फ चीजों का वेट नहीं किया करते थे, हम उनके लिए अपने दिल में और अपने वक्त में बिल्कुल जगह बनाते थे। और इसीलिए ये जो शो है हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है बट इसका रिपीट टेलीकास्ट भी आता है, बाय द वे इफ यू डोंट नो अबाउट इट, सैटरडे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बिल्कुल इसका ऑनकोर आप कैचअप कर सकते हो। फिलहाल के लिए 90s के गाने कैचअप करिए और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

कसल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। '90s में बॉलीवुड के गानों में भाई सीढ़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट थी, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। यहाँ पर मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। और अगर आपने 90s बॉलीवुड के डांस सॉन्ग्स ध्यान से देखे हो तो एक चीज बार बार ये नजर आती है कि अगर हीरो आ रहा है तो सीढ़ियों से आ रहा है, हीरोइन आ रही है तो सीढ़ियों से आ रही है, 100 डांसर्स आ रहे हैं वो भी सीढ़ियों से आ रहे हैं। मतलब कभी कभी लगता था गाना शूट हो या ना हो सीढ़ियां जरूर होनी चाहिए। अरे वाह, वो जायंट वाइट स्टेयरकेसेस, है ना, कभी पैलेस सेट में, कभी डिस्को सेट में, कभी शादी के गानों में, कभी बिना किसी रीजन के भी। और इसका एक इंटरेस्टिंग बॉलीवुड रीजन भी था, 90s के कोरियोग्राफर्स को ना लार्ज स्टेयरकेस के सेट्स बहुत ज्यादा पसंद थे क्योंकि उनसे डांसर्स को डिफरेंट लेवल्स पे पोजीशन किया जा सकता था। सो नीचे डांसर्स, बीच में हीरोइन, सबसे ऊपर हीरो, और सडनली फ्रेम बहुत काफी ह्यूज लगने लगता था। एक ही कैमरा शॉट में काफी डेप्थ आ जाती थी, मूवमेंट भी है, ड्रामा भी है, एंड स्टेयर्स एंट्री को ऑटोमेटिकली ग्रैंड जो है एक फीलिंग दे देती थी। नॉर्मल रूम में एंटर करो तो ठीक है, लेकिन 20 सीढ़ियां उतरते हुए एंटर करो तो आप एकदम स्टार लगते थे। स्पेशली माधुरी दीक्षित सॉन्ग्स, करिश्मा कपूर के डांस नंबर्स, ग्रैंड वेडिंग सीक्वेंसेस, दूल्हे की साली, ओ हरे दुपट्टे, कैसे एकदम सर से माधुरी दीक्षित। वैसे भी हम आपके हैं कौन में स्टेयर्स हैव लाइक स्टेयर्स तो हीरो है, अपने आप में ही उसका एक किरदार है पूरी मूवी में, नहीं बट वेल ऑडियंस को ये सारा चीज देख के लगता था कि यार कितना बड़ा सेट है। आजकल क्या है, क्या मिनिमल सेट्स होते हैं एंड CGI बैकग्राउंड्स होते हैं, तब रियल स्टेयर केसेस होती थी, रियल डांसर्स होते थे, रियल ड्रामा भी होता था। 90s के डांस सॉन्ग्स आज भी इतने विजुअली मेमोरेबल आई थिंक इसीलिए लगते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर है, पता नहीं ये गाना अचानक से भी याद आ गया तो यही प्ले कर देती हूँ, क्या कहते हो, लेट्स गो।

ये पता नहीं अचानक से कहाँ से याद आया, बट देन आई थिंक आई नो व्हाई, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट फोन्स जो है कुछ देर पहले, एंड देन सडनली आई रियलाइज, अभी बैठे बैठे हुए मैं कह रही हूँ ना कि जब भी मैं 90s वाला ये मस्ती 90s मिक्स टेप शो करती हूँ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, व्हाइल आई एम टॉकिंग देर आर सो मेनी मेमोरीज जो वो उचक उचक के बाहर आ जाती है और कहती है कि अरे तुम्हें ये याद आया, एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स. ये कौन बोल रहा है? बिल्कुल जी, 90s के लैंडलाइन फोन्स ना कभी कभी बड़े क्रिएटिव हो जाते थे कि आप किसी और को कॉल कर रहे होते थे और बीच में किसी तीसरे इंसान की आवाज खो जाती थी. क्रॉस कनेक्शन, डू यू रिमेम्बर? याद आया आप शर्मा अंकल को फोन करने के लिए बैठे हो, रिसीवर उठाया, नंबर डायल किया, अचानक लाइन पे दो अननोन लोग बात कर रहे हैं. एक बोल रहा अच्छा हाँ हाँ फिर करते थे, फिर कर ठीक है हाँ हाँ जी मिलते हैं. आप बीच में कर रहे हो हेलो. सो 90s की टेक्नोलॉजी प्रेडिक्टेबल नहीं थी, एवरीथिंग वॉज न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर पीपल हु आर ग्रोइंग अप 90s के टाइम पर, उनके लिए तो बहुत ही कमाल था. उसके भी मूड स्विंग्स हुआ करते थे टेक्नोलॉजी के, कभी लाइन बिजी, कभी आवाज एको, कभी क्रॉस कनेक्शन. एंड क्रॉस कनेक्शन का पहला रिएक्शन कंफ्यूजन नहीं होता था, कि क्यूरियोसिटी होती थी कि ये लोग कौन है. कभी कभी दोनों पार्टीज को पता भी नहीं होता था कि तीसरा बंदा उनकी बातें सुन रहा है, पूरा एक्सीडेंटल पॉडकास्ट. फिर आप पोलाइटली बोलते थे हेलो, लाइन ना क्रॉस कनेक्शन क्रॉस हो गई है. एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आती थी. सो आज की क्या है कि प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, एनक्रिप्शन एंड सिक्योर नेटवर्क्स का जमाना है, तब टेक्नोलॉजी कभी कभी रैंडमली सोशल नेटवर्किंग करा देती थी. एंड लैंडलाइन के कॉन्वर्सेशंस भी कितनी रॉ होती थी ना, कि कोई देखिए म्यूट बटन तो है नहीं, कोई स्पीकर फोन भी नहीं है, कोई कॉल वेटिंग नहीं है, बस लाइन और लक. और क्रॉस कनेक्शन का मतलब था कि आज सिस्टम ने सरप्राइज गेस्ट भेज दिया है. भाई 90s का कुछ भी बोलो यार, कोई इतना परफेक्शन अगर नहीं था, लेकिन हर चीज में पर्सनालिटी बहुत थी. कभी कोऑपरेट करती थी, कभी ड्रामा करती थी, और कभी कभी दो अननोन लोगों की बातचीत फ्री में सुना देती थी. How to explain the Gen Z or you know this generation के जो बच्चे हैं कि क्रॉस कनेक्शन क्या होता है, वो कहेंगे नो इट मस्ट बी अ बग. Yeah, right. Stay tuned to Radio Mastery 24/7 Live.

रील से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ड्रॉप के साथ। आई नो धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट यस एक स्पेशल जो क्वालिटी। आई थिंक एवरी फॉर द पास्ट थ्री एपिसोड्स बाय द टाइम हम लोग ये एकदम आखिर की तरफ आते हैं, कुछ ना कुछ मेरे साइकिल की मेमोरी जो है एकदम इसी वक्त पर जो है ऑन हो जाती है। भाई किसी भी गेम के अंदर हम लोग ना 90s के बच्चे जो है बिल्कुल अलग ही एक गेम बना दिया करते थे। सो चाहे वो क्रिकेट के अंदर का चैलेंज हो, लूडो के अंदर का चैलेंज हो, या फिर साइकिल राइड के अंदर का पूरा ओलंपिक्स हो। नाउ ऑफ कोर्स उनमें से ये एक चैलेंज जो मुझे याद आया कि देखते हैं कौन सबसे देर तक पैर जमीन पर नहीं लगाता है साइकिल की रेस के दौरान। अभी रेस शुरू भी नहीं हुई है, कॉम्पिटिशन पहले ही शुरू हो जाता था कि सिग्नल पे रुकना है, ठीक है, लेकिन पैर जमीन पे नहीं लगना चाहिए। बस साइकिल को देखना है कि बैलेंस कितना अच्छा कर लेते हो, लेफ्ट राइट वॉबल करो, हैंडल एडजस्ट करो, एंड समहाउ हवा में सस्पेंडेड रहो, दोनों पैर ऐसे ऐसे फैलाकर, दोनों वी बनाकर किया है आपने साइकिल में। सो ये ऑफिशियली कोई स्पोर्ट नहीं था, लेकिन कॉलोनी के बच्चों के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के बराबर हुआ करता था 90s में। और जो बंदा या बंदी सबसे देर तक बैलेंस कर लेता उसकी रेस्पेक्ट लेवल जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती थी कि यार इसको देखो अच्छा इसमें कोई प्राइज नहीं, ट्रॉफी नहीं, बस ब्रैगिंग के राइट्स मिल जाते थे, पर वही सबसे इंपॉर्टेंट था। और बैलेंस मेंटेन करते वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन होती थी, उफ, जैसे टाइट रोप पे वॉकर परफॉर्मेंस दे रहा हो। और आज सोचो तो हम साइकिल चलाने अगर निकले, पर एक्चुअल गेम रेस नहीं था गेम था चैलेंज के अंदर का चैलेंज। या बोर्डम मिटाने के ऐसे अतरंगी तरीके निकाल रखे थे ना 90s के बच्चों ने, तभी वो इतने क्रिएटिव और इतने इमेजिनेटिव है, नहीं लगता नहीं आपको? मुझे लगता है कि अभी इसी बात के साथ हम एक म्यूजिकल 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक में एकदम पैर उठा के, नहीं पैर लगना नहीं चाहिए जमीन पे, बिल्कुल एंटर करते हैं, लेट्स गो।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 40% ऑफ, 40% जॉय आलुकास,
3: 40% ऑफ, ओह माय गॉड, लेट्स गो, लेट्स गो।
4: ऑफर ऐसा कि आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। जॉय आलुकास लाया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड, पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज। Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
5: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
2: या मेरा मन तो नहीं करता लेकिन क्या करूं अब वो वक्त आ ही जाता है तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, राइट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतराब के साथ और यहां पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई एक और एपिसोड यहां पे अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जैसे कैसेट के एंड में वो हल्का सा क्लिक सुनाई देता था ना, वैसे ही आज की ये यादों वाली रील भी धीरे धीरे से जो है अब रैप अप करने के उस पड़ाव पे आ चुकी है। आज हम फिर से गए हमारी 90s के दुनिया में, जहां पे हमें जाना बहुत ज्यादा पसंद है, जहां लैंडलाइन की एक रिंग पूरे घर को गेसिंग गेम में डाल देती थी, जहां हीरो के जूतों से पहले एंट्री होती थी और चेहरा बाद में दिखाया जाता था, ब्राउन पेपर कवर्स और नेम स्लिप्स स्कूल शुरू होने से पहले एनुअल प्रोजेक्ट हुआ करते थे, जहां नया इरेजर यूज करने से पहले उसकी ब्यूटी को एडमायर किया जाता था, बॉलीवुड के हीरोज का और हीरोइंस का डबल डेनिम पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया जीतने निकल पड़ना was another thing, right? जहाँ पे coming next week देख के पूरा हफ्ता excitement में निकल जाता था, जो कि इस show के लिए बिल्कुल बिल्कुल feel किया जाता है। But 90s की यादों में इतना magic क्यों है? क्योंकि उस वक्त हम हर चीज को थोड़ा धीरे धीरे आराम से पॉज लेके जीते थे। गाना आया तो पूरा सुनेंगे, फोन आया तो क्यूरियोसिटी के साथ उठाएंगे, मूवी आई तो उसका इंतजार होगा, नई स्टेशनरी मिली तो उसे यूज करने से पहले उसे बिल्कुल जी भर के निहार लेंगे। आजकल क्या है ना कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उस वक्त अटेंशन ज्यादा था और इसीलिए हर छोटी सी छोटी चीज जो है वो मेमोरी बनकर रह गई। एंड खूबसूरत सी एक साइकिल, एक टीवी कैबिनेट, वो क्रोशे कवर, सब कहीं ना कहीं दिल के एल्बम में जो है छप के रह गए हैं। 90s की सबसे बड़ी लग्जरी न केबल टीवी थी, न वीडियो गेम्स था, न इंपोर्टेड चॉकलेट्स थे मेरे दोस्त। 90s की सबसे बड़ी लग्जरी थी कि हमें किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी। बिलहाल मुझे जो है बिल्कुल आज की डेट में दीजिए इजाजत। बिल्कुल इसका ऑनकोर आप सुन सकते हैं सैटरडे को सुबह 8 से 10, एंड नए एपिसोड के लिए अगले हफ्ते बिल्कुल तैयार रहिएगा। सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड।

0: जी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यादों की पुरवाई के साथ लौट आया है आपका अपना समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, लेकर यादों का कारवां। और बताइए आजकल क्या कर रहे हैं, बताइए हमारे फेसबुक पेज पर आकर बताइए, और अपनी यादों से हमें रूबरू कराते रहिएगा, और इस शो से जो आपको यादें आ रही हैं ना, उन यादों से हमें मिलवाते रहिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज का शो। जब से फिल्मों में आइटम सॉन्ग की डिमांड बढ़ने लगी, तब से आइटम सॉन्ग फिल्म की जान बन गए। या यूं कहूं कि जब अगर फिल्म हल्की सी लगने लगती थी तो उसमें एक आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता था, ताकि लोग उसी आइटम सॉन्ग की वजह से खींचे चले आएं सिनेमा हॉल में। और ये फार्मूला कारगर साबित हुआ, लोग वाकई आइटम सॉन्ग की वजह से फिल्म देखने आ जाते थे, तो प्रमोशन का खर्च बहुत हद तक कम हो जाता था। एक ऐसा ही आइटम सॉन्ग आया जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह थे, मिस वर्ल्ड थी और शहंशाह के बेटे भी थे। भाई अब एक ऐसा सॉन्ग होगा तो उसका तो कहना ही क्या। क्या हुआ, आप चौंक गए? तो जनाब चौंकी मत, ये गाना था कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली साहब की आवाज में। गुलजार की बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत, फिल्म बंटी और बबली से। तो यू गैस इट राइट, अभी हम बंटी और बबली के म्यूजिक की बात करने वाले हैं। वैसे इस फिल्म का डायरेक्शन किया था शाद अली साहब ने। आइटम सॉन्ग में ये पहला गाना है जिसमें बहू, बेटे और ससुर ने एक साथ काम किया है। इन शॉर्ट बोले तो ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन। हालांकि उस वक्त तक ये रिश्ता बना नहीं था। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि इस गाने की शूटिंग के वक्त ऐश्वर्या राय से ज्यादा अभिषेक बच्चन नर्वस थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि खुद के पापा के साथ केमिस्ट्री कैसे बिठाएं और कैसे रिएक्ट करें। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, रानी मुखर्जी और पुनीत इस्सर जैसे कलाकारों ने काम किया, और राज बब्बर भी थे। अभिषेक बच्चन के पिताजी तो राज बब्बर ही थे ना, पुनीत इस्सर बने थे रानी मुखर्जी के पिताजी। ये वही पुनीत इस्सर हैं जिनसे लड़ाई करते वक्त अमिताभ बच्चन साहब को कुली फिल्म के एक शॉट में चोट लगी थी। और जब इस चोट की बात आती है तो बहुत सारी यादें चली आती हैं, उसकी भी बात करेंगे जब हम इस फिल्म की बात करेंगे, कुली की बात करेंगे। फिलहाल हमारा कारवां 2005 से गुजर रहा है और हम बात कर रहे हैं बंटी और बबली की। क्या आप जानते हैं कि बंटी वाले किरदार के लिए पहले किसी और एक्टर से बात की गई थी? कौन थे वो, बता दूं? बैठे ही बताने के लिए हूं, बताऊंगा ही। आप कहेंगे नहीं बताओ तो भी बताऊंगा। बंटी के रोल के लिए पहले ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था, लेकिन ऋतिक ने ये शर्त रख दी कि इस फिल्म को यश जी या आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करें। अच्छा, इसके अलावा जो कजरारे कजरारे गाना है ना, इसमें भी ऐश्वर्या की जगह पहले मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को लिया जाना था, पर अचानक से ऐश्वर्या को ले लिया गया। अक्की नरूला ने रानी मुखर्जी के लिए ड्रेस डिजाइन की थी इस फिल्म के लिए, और इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने जो पटियाला सलवार पहनी और कुर्ती जो पहनी, उसका ट्रेंड चल पड़ा था, फैशन में आ गया था, गर्ल्स ने खूब फॉलो किया। तो ये आलम था इस फिल्म की सफलता का। फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं, क्या कहते हैं आप, इस फिल्म से और उस दौर की कुछ और फिल्मों से। सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। बस मैं यूं गया और यूं आया,
2: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम न

कहा था ना यूं गया और यूं आया। लीजिए हाजिर है समर लेकर यादों का कारवा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। अक्षय के फाइटिंग सीन में जितनी बढ़िया टाइमिंग रहती है उतनी बढ़िया टाइमिंग की कॉमेडी करते हैं वो, और इस बात को अक्षय ने कई फिल्मों में प्रूव किया, और जिस फिल्म का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उसमें तो किया ही किया। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म गरम मसाला की मैं बात कर रहा हूँ। इस फिल्म में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, नेहा धूपिया, रिमी सेन, राजपाल यादव और परेश रावल ने अपने अभिनय से सबको खूब हंसाया। प्रीतम का म्यूजिक था, समीर और मयूर पुरी के लिखे हुए गाने थे जिन्होंने धूम मचा दी थी। अदा जानलेवा अदा, सोनू निगम ने इस गाने को गाया था। अक्षय और प्रियदर्शन ने इस फिल्म से पहले एक और फिल्म में काम किया था, आप तो जानते हैं उस फिल्म का नाम, हेरा फेरी की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ ये फिल्म अक्षय कुमार को कॉमेडियन के तौर पर, एक अच्छी टाइमिंग के कॉमेडियन के तौर पर एस्टेब्लिश कर रही थी, वहीं जॉन अब्राहम की ये फर्स्ट कॉमेडी फिल्म थी। इसी फिल्म का एक और गाना फलक देखूं, ये मयूर पुरी ने लिखा और सोनू निगम और उदित नारायण की आवाज में इसे आप सबने सुना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है गाना। अक्षय कुमार की कॉमेडी लाजवाब थी और इसीलिए उन्हें अपने कॉमिक रोल के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल। वैसे शायद आपको ये पता ना हो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कान जरा पास लाइए, नहीं भी लाएंगे तो मैं जोर से बोल दूंगा। ये फिल्म प्रियदर्शन की बनाई हुई मलयालम फिल्म बोइंग बोइंग का रीमेक थी। क्या बात बताइए मैंने आपको, पता हमारे साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरी में बोइंग नाम का भी एक साउंड इफेक्ट होता है, वो कुछ ऐसे साउंड करता है टोइंग। चलिए फिलहाल टोइंग टोइंग करते हुए ये वाले गाने सुन लेते हैं और उसके बाद लौट कर जब मैं आऊंगा तो आपसे यादों के कारवां में बहुत सारी बातें करूंगा, आपसे आपकी यादों के बारे में पूछूंगा। आप सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो, दैट इज रेडियो मसी 24/7 लाइव।

अरे भैया ये नो एंट्री का बोर्ड क्यों लगा रखा है? समर आ गया है, हटाइए बोर्ड को। वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर यादों का कारवां। देखिए नो एंट्री की बात की है तो अब इसी फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। नो एंट्री, इश्क की गली विच नो एंट्री। भाई एक तो इश्क की गली और ऊपर से उसमें भी नो एंट्री, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? इश्क की गली में तो लोग फिसल जाया करते हैं, पता भी नहीं लगता उनको। वैसे गाना बड़ा कमाल है, इश्क की गली विच नो एंट्री, सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की आवाज में। गाना अनीस बज्मी की फिल्म थी नो एंट्री, उससे सलमान खान थे इस फिल्म में, अनिल कपूर थे, ईशा देओल, फरदीन खान, बिपाशा बसु और सेलिना जेटली इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे और सबने मस्त एंटरटेन किया। बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। फिल्म में संगीत दिया था अनु मलिक ने और गाने लिखे थे समीर साहब ने। इस फिल्म में बिपाशा के ऑपोजिट संजय कपूर को साइन किया गया था पहले विलेन की भूमिका के लिए। अब आप सोच रहे होंगे संजय कपूर कौन? भैया मिस्टर इंडिया के भाई हैं संजय कपूर, बोनी कपूर के भाई, श्रीदेवी के देवर, कितने सारे रिश्ते बता दिए भाई। वो भी एक एक्टर हैं और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, ऐसी भी क्या बात है। मैंने बताया था ना आपको राजा फिल्म के बारे में, राजा के हीरो थे वो। वैसे राजा माधुरी दीक्षित की वजह से याद रहती है लोगों को, संजय कपूर ने एक दो अच्छी फिल्में की हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ यार मुझे दो एक फिल्में उनकी अच्छी लगी हैं और हर शेड का रोल किया उन्होंने, विलेन भी बने वो। अच्छा ये जो फिल्म थी ना, दरअसल ये फिल्म तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन पर आधारित थी। पहले इस फिल्म में तब्बू को लेकर शूट करने का प्लान था पर अचानक से लास्ट मोमेंट पर तब्बू को हटाकर लारा दत्ता को ले लिया गया और तब्बू को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चला, मतलब उनसे जिक्र ही नहीं किया गया, उनको ऑफर ही नहीं किया गया। जब फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर से तब्बू ने बात की तब जाकर पता चला कि अब वो फिल्म का पार्ट नहीं है। तब्बू की एक्टिंग जितनी दमदार होती है उतनी कमाल की ये शख्सियत भी है। तब्बू ने अभी तक शादी नहीं की है और तब्बू की बड़ी बहन भी फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस एक्ट्रेस रही है। आपको पता है क्या? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, फरहा नाज उनका नाम है, जो एक्चुअली बड़ी एक्ट्रेस थी, बड़ी हिट फिल्में दी उन्होंने अपने जमाने में, लेकिन उसके बाद तब्बू छा गई। फिल्म नो एंट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इस फिल्म को जब सन 2002 में बोनी कपूर ने बनाना शुरू किया तो उस वक्त इस फिल्म को मिस्टर इंडिया मूवी के कैलेंडर शूट करना चाहते थे। कैलेंडर याद है आपको? सतीश कौशिक की बात कर रहा हूं मैं। दरअसल सतीश कौशिक इस फिल्म को अनिल कपूर, संजय दत्त और सलमान खान को लेकर बनाना चाहते थे पर इन तीनों कलाकारों के आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठने से फिल्म की शुरुआत ही नहीं हो पाई। खैर जी फिल्म अनीस बज्मी ने बड़ी कमाल की बनाई है और जबरदस्त कॉमेडी है, अगर आप देखेंगे अकेले में भी तो खिलखिला उठेंगे। फिलहाल तो एक गाना सुनते हैं इस फिल्म से और उन यादों को ताजा करते हैं जो इस गाने के साथ चिपकी हुई लिपटी हुई आ रही है अब तक। और आप भी रेडियो मसी 24/7 लाइव से यूं ही चिपके रहिए और सुनते रहिए यादों का कारवां विद समर।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब हूं और आज 2005 और 2006 में रिलीज फिल्मों की बातें आपसे कर रहा हूं। तो एक और फिल्म जो मुझे बहुत ही खूबसूरत फिल्म लगी, गौर फरमाइएगा, मैं कह रहा हूं खूबसूरत, जी वाकई बहुत ही सुंदर ये फिल्म है। इसका नाम था पहेली। वैसे पहेली हमेशा से दिमाग में एक बेचैनी और रोमांच पैदा कर देती है, और ऐसी बेचैनी और रोमांच शाहरुख खान के भूत के किरदार ने भी निभाकर पैदा की, और ये बेचैनी पब्लिक को इतनी पसंद आई कि ये फिल्म इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में नॉमिनेट की गई। फिल्म एक राजस्थानी कहानी पर बेस्ड है। विजयदान देथा, जो राजस्थान के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, विजी उन्हें कहा जाता था, उनकी कहानी थी ये। दुविधा नाम से ये कहानी थी, और ये दुविधा इस फिल्म में बेहद खूबसूरती से दिखाई गई है। राजस्थान इतना कलरफुल है, और ये कलर्स अनिल मेहता की फोटोग्राफी में साफ साफ नजर आते हैं। इस फिल्म में बहुत सुंदर फिल्म है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ सुंदर फिल्म है, देखेंगे तो जान जाएंगे। शाहरुख खान ने लीक से हटकर काम किया और बहुत कमाल काम किया। डबल रोल है उनका, एक भूत और एक व्यापारी। व्यापारी वही है, मारवाड़ी व्यापारी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाले। लाभ कमाने के लिए अपने घर परिवार से कितना भी दूर रहना पड़े रह लेंगे, लेकिन पैसा कमाएंगे, व्यवसाय करेंगे। वहीं भूत रानी मुखर्जी की जिंदगी में प्यार की कमी को खत्म करता है, और भूत से रानी मुखर्जी को प्यार हो जाता है। फिल्म के गाने, फिल्म का म्यूजिक कमाल का था, MM क्रीम का ये म्यूजिक था, बहुत बढ़िया गाने थे। फिर राधिकटी, इसे कैसे भूल सकते हैं आप, सुनिधि चौहान और सुखविंदर की आवाज में मस्त गाना। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कठपुतलियां थी, इनको बैकग्राउंड में आवाज दी थी नसरुद्दीन शाह और उनकी धर्मपत्नी रत्ना शाह ने। गुलजार साहब गाने लिखते हैं तो कमाल ही हो जाता है, बिल्कुल वो कमाल हुआ भी इस फिल्म में। फिल्म से जुड़ी और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस फिल्म के आप कुछ गाने सुन लिए जाएं। लेकिन उससे पहले गानों का जिक्र और कर लेता हूँ। गाना एक था धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में था ये गाना, और इसके अलावा श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शिंदे और सोनू निगम की आवाज में वो गाना था ना, कंगना रे, बहुत ही बढ़िया गाना है। अभी फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले कुछ गाने सुन लेते हैं, फिर इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। आप सुन रहे यादों का कारवां विद समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं हाजिर होता हूँ इन गानों के बाद।

वेलकम बैक। आप समर को जानते हैं लेजेंड्स वाले समर के नाम से, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ यादों को आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, फिल्मों से जुड़ी यादों को, फिल्मों की बातें कर रहा हूँ और आपसे आपकी यादों को शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। हमारे फेसबुक पेज पर आकर आप जरूर हमें बताइए कि आपको इन फिल्मों से जुड़ी कौन कौन सी यादें आ रही हैं। अगली फिल्म की बात कर लें, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म, फिल्म ही नहीं उसके गाने भी, और गाने नहीं उसके डायलॉग्स भी कमाल कमाल कमाल थे। पहली भारतीय फिल्म जो सिनेमा घरों में और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से एक साथ रिलीज हुई। जानते हैं कौन सी थी ये फिल्म? राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म थी ये, विवाह नाम था इसका। सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म। फिल्म में शाहिद कपूर थे, अमृता राव थी, अनुपम खेर थे, आलोक नाथ थे और सीमा बिस्वास थी। श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज में गाए गए गाने मुझे हक है के बोल लिखे थे रविंद्र जैन ने और म्यूजिक भी उन्हीं का था। रविंद्र जैन का क्लास काम है ये। अमृता राव और शाहिद कपूर की एक साथ ये चौथी फिल्म थी। और भी बहुत सारी बातें हैं। फिल्म में शाहिद कपूर का नाम था प्रेम। दरअसल सूरज बड़जात्या की फिल्म के लीड कैरेक्टर का नाम हमेशा प्रेम ही होता है। इसकी शुरुआत सलमान खान से मैंने प्यार किया में हुई थी और वो इस फिल्म में भी सलमान खान को ही लेना चाहते थे। रविंद्र जैन की राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ ये लास्ट फिल्म थी और राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ रविंद्र जैन का ये सातवां कोलैबोरेशन था। जिस तरह से आरके फिल्म्स के लिए शंकर जयकिशन की जोड़ी थी ना, ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए रविंद्र जैन साहब थे। वेल, फिल्म की कहानी बहुत ही सीधी सपाट है लेकिन दिल को छू लेती है। ऐसा लगता है जैसे सगाई होने के बाद दूल्हे दुल्हन के मन में जो कुछ चल रहा होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, उन तमाम चीजों को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही सादगी से पेश कर दिया गया। और जो भी लोग इस दौर से गुजर रहे होते हैं उन्होंने इस कहानी से अपने आप को रिलेट किया। इस फिल्म के गाने चाहे वो दो अजनबी हों या हमारी शादी में बाकी हैं हफ्ते चार, बाबुल सुप्रियो और श्रेया घोषाल की आवाज में गया गाना, ये बहुत ही कमाल का गाना था। एरोप्लेन में शूट किया गया। इस फिल्म में रविंद्र जैन ने संगीत दिया और बहुत कम लोगों को पता है कि रविंद्र जैन बचपन से देख नहीं पाते थे। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में जबरदस्त संगीत दिया, जैसे चोर मचाए शोर, फकीरा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, हीना, ये आग कब बुझेगी वगैरह वगैरह। तो उनको सैल्यूट और उनके इस टैलेंट को आपके सामने भी पेश कर रहा हूं मैं इस गाने के जरिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: मुझे तेरी सांसों में पनाह मिल जाए, मेरी जिंदगी तेरे इश्क में फना हो जाए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की दर्द भरी आवाज में फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पढ़ाकू एक्ट्रेस को बोला गया डायलॉग, हजारों इश्क के दीवानों को इश्क में फना होना सिखा गया। वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप समझ गए मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फना की। और पढ़ाकू एक्ट्रेस कौन है ये भी अब आप समझ गए होंगे। फिर भी एक हिंट देता हूँ, इनकी नानी बहुत उम्दा कलाकार रही है और इनकी मम्मी और मौसी भी। मौसी का तो कहना ही क्या, लाजवाब अभिनय किया उन्होंने, याद आया? नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं आप, चांद सिफारिश जो करता हमारी आए? शान और कैलाश खेर ने जिस फिल्म में गाना गाया उसकी हीरोइन कौन थी जिन्होंने कमबैक किया था इस फिल्म में? काजोल की बात कर रहा हूँ मैं। प्रसून जोशी ने लिखा था ये गाना और कमाल का म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने। फना फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, कुणाल कोहली के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म फना। और ये जो गाना ना चांद सिफारिश जो करता हमारी, इस गाने के लिए कैलाश खेर साहब को बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और गाया क्या था उन्होंने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब खाली गाने में तड़का लगाने का उन्हें अवार्ड मिल गया। इस गाने को लिखने वाले गीतकार प्रसून जोशी जी को भी बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल। इस फिल्म में काजोल थी, आमिर खान थे, ऋषि कपूर, किरण खेर, और ये वो लोग थे जिन्होंने इस फिल्म में मेन भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और एक तरह से काजोल को एक जबरदस्त कमबैक मिला। शादी और बच्चे होने के बाद काजोल ने इस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया था और ये कमबैक इतना जबरदस्त था कि काजोल बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड को अपने नाम तक कर ले गई। सन 2001 के बाद आई फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद से काजोल ने कोई फिल्म साइन नहीं की थी, फिल्म फना से उन्होंने कमबैक किया था। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, इस फिल्म की जो कहानी है वो कश्मीर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म में जो पहाड़ दिखाए गए हैं बर्फ वाले वो कश्मीर के ना होकर पोलैंड के हैं। इस फिल्म की शूटिंग पोलैंड में की गई थी। पहले बर्फ वाले तमाम दृश्य जम्मू कश्मीर में ही फिल्माए जाने वाले थे, लेकिन वहां पर टेररिज्म थोड़ा सा ज्यादा था उन दिनों में, तो काजोल ने एक्टिंग करने से मना कर दिया था, इसलिए शूटिंग की लोकेशन को चेंज किया गया और इन तमाम सीन्स को पोलैंड में फिल्माया गया। इस फिल्म में काजोल और आमिर खान दूसरी बार साथ साथ काम कर रहे थे, इससे पहले इश्क में काम किया था उन्होंने। चलिए इतनी सारी बातें इस फिल्म से हो गई तो क्या बोलते हैं आप, सुनवा दूं एक बढ़िया गाना इस फिल्म से। सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। बस मैं यूं गया और यूं आया।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो स्टेशन है ये, नाम है इसका रेडियो मजी 24/7 लाइव, और मेरा नाम है समर। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर, वेलकम बैक। अब मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो रावलपिंडी एक्सप्रेस की एक्टिंग वाली फिल्म है। कौन सी? सोचिए सोचिए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर अगर एक्टिंग करते तो वो कैसे दिखाई देते? जब मैं ये सोचता हूँ तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। शायद आपका भी दिमाग काम करना बंद कर रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहे हो, मैं आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ये अलग बात है कि शोएब एक्टिंग लाइन में नहीं आए, लेकिन वो आ सकते थे क्योंकि उन्हें ये फिल्म ऑफर की गई थी जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ। तू ही मेरी शब है, सैयद कादरी के बोल वाली फिल्म, जिसमें केके की दिलकश आवाज ने प्रीतम के हार्ट टचिंग म्यूजिक को बेहतरीन बना दिया था। फिल्म का नाम था गैंगस्टर। अनुराग बासु के डायरेक्शन में बनी थी फिल्म गैंगस्टर, जिसमें इमरान हाशमी थे, शानिया आहूजा और कंगना की, तो ये डेब्यू फिल्म थी और उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म के लिए। चलिए बैक टू द शोएब अख्तर वाली बात। शानिया आहूजा वाला रोल पहले शोएब अख्तर को ऑफर किया गया था, पर शोएब ने साफ मना कर दिया कि उन्हें एक्टिंग लाइन में नहीं जाना है, कोई इंटरेस्ट नहीं उनका। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंगना वाला रोल पहले रीमा लांबा को ऑफर किया गया था। रीमा लांबा तो समझिए ना आप, मर्डर वाली रीमा लांबा। मैं बात कर रहा हूँ मल्लिका शेरावत की। मल्लिका शेरावत का असली नाम रीमा लांबा है। तो जब मल्लिका ने खुद ही फीस बहुत ज्यादा बताई तो भट्ट ने, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने नए चेहरे को लॉन्च करने का प्लान बना लिया और कंगना रनौत ने इस फिल्म से एंट्री की। इस फिल्म की कहानी जितनी बढ़िया है, इसके गाने उससे भी ज्यादा बढ़िया हैं। सईद कादरी का लिखा हुआ गाना, जुबीन गर्क की आवाज में गाया गया गाना या अली, ये भी बड़ा कमाल का है, सीधे दिल को छूता है। इस फिल्म की शूटिंग साउथ कोरिया की राजधानी सोल में भी हुई थी। इसी फिल्म का एक और गाना है भीगी भीगी सी, ये मुझे बड़ा पसंद है, जेम्स की आवाज में गाया गाना, बहुत ही क्लासिक है। इस गाने में प्रीतम ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी। वैसे प्रीतम गिटार उठाकर कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन इस गाने में पहली बार नजर आए थे। तो चलिए काम करते हैं, गैंगस्टर का ये गाना सुन लेते हैं और उसके बाद यादों की कारवां को और आगे ले चलेंगे, कुछ और फिल्मों का जिक्र करेंगे। स्टे कनेक्टेड।

लीजिए हाजिर हो गया हूँ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर यादों का कारवां। जाने से पहले मैं बात कर रहा था फिल्म पहेली की, उसका गाना भी सुनवाया था मैंने आपको और कहा था कि जब लौटूंगा तो इस फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें भी करूंगा आपसे। तो ये ऐसा था कि इस फिल्म के गानों में जहां एक तरफ राजस्थानी फोक म्यूजिक की झनकार सुनने को मिलती है तो दूसरी तरफ राजस्थानी साहित्य के महान लेखक विजयदान देथा की लिखी हुई कहानी फिल्मी पर्दे पर एक अलग ही रूप में देखने को मिली थी। वैसे आपको बता दूं कि ये फिल्म 1973 में बनी फिल्म दुविधा का रीमेक थी पहेली, मणिकौल ने इसे डायरेक्ट किया था और जैसे कि मैंने कहा कि

दुविधा नाम से ही विजयदान देथा जी ने विज्जी ने ये कहानी लिखी थी। लेकिन पहली फिल्म का नाम पहले पहेली नहीं था, घोस्ट का दोस्त रखा गया, बाद में इसका नाम पहेली रखा गया। अच्छा, इस फिल्म के प्रोड्यूसर शाहरुख खान थे और अमोल पालेकर ने इसे डायरेक्ट किया था। बेहतरीन डायरेक्शन भाई, मैं तो बहुत तारीफ करूंगा इस फिल्म की। और अमिताभ बच्चन साहब ने कैमियो किया था, वो एक शेपर्ड बने थे, एक बकरी चराने वाले जो भूत को अपनी छागल में बंद कर लेते हैं और ले जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग 47 दिनों में पूरी हो गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब को जब इस फिल्म के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि यार देखो, राजस्थान में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है तो मैं जा नहीं सकता। उनके सीन के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन राजस्थान से हजारों ट्रक रेत मंगवा कर राजस्थान के रेगिस्तान से वहां बिछा दी गई और अमिताभ बच्चन साहब के सीन बॉम्बे में ही शूट किए गए, रेगिस्तान वहां बना दिया गया। अच्छे फिल्म मेकर परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे इस फिल्म में शाहरुख खान की बेस्ट फ्रेंड जूही चावला ने भी एक्टिंग की है। सुनील शेट्टी की पत्नी बनी है वो, शाहरुख खान की भाभी। क्या हुआ, आपको भी किसी पहेली को हल करना है क्या? कुछ यादें आज भी पहेली बनकर बार बार सामने आ जाती हैं। तो एक काम करते हैं, उन यादों को शेयर कर लेते हैं दूसरे से। कहते हैं कि अंशुल जी पहेलियों को जब यूं शेयर करते हैं दोस्तों के बीच तो उसकी हल भी निकल आते हैं। सुनते रहिए यादों का कारवां, बस मैं यूं गया और यूं आया। स्टे कनेक्टेड।

ओ भाई डीजे आ गया, ओए संभाल लो अपने आप को। वेलकम बैक, मेरा नाम तो समर है, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आ गया। और डीजे की बात क्यों कर रहा हूँ आपको मालूम है, यादों का कारवां चल रहा है और मैं कुछ गुजरे जमाने की फिल्में आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये जो जमाना है ये बहुत ज्यादा पीछे का जमाना नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आप में से हम में से ये फिल्में देखी हैं। मैं बात कर रहा हूँ डीजे वाली फिल्म की, नहीं उसकी नहीं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाने वाली नहीं, डीजे बोले तो दलजीत वाली फिल्म की, समझ गए आप? हाँ अजी, वो मस्ती की पाठशाला वाले डीजे, समझ गए आप? मैं बात कर रहा हूँ रंग दे बसंती की, जिसका डायरेक्शन किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने और फिल्म में डीजे का रोल प्ले किया था आमिर खान ने। मोहम्मद असलम, नरेश और ब्लेज की आवाज में था ये गाना, जिसे एआर रहमान ने तैयार किया, म्यूजिक उन्हीं का था, प्रसून जोशी ने लिखा। मस्ती की पाठशाला, आई लव इट, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये गाना। पर आपको पता है कि आमिर खान ने डीजे के रोल को प्ले करने से पहले मना कर दिया था। जिस वक्त आमिर खान को ये फिल्म ऑफर की गई थी उस वक्त आमिर की उम्र थी 40 वर्ष और डीजे का कैरेक्टर था 25 साल का यंग स्टूडेंट। पर आमिर को लगा कि वो इस रोल को कर सकते हैं जब उन्होंने 10 किलो वजन कम किया और एक पंजाबी टीचर को अपॉइंट किया ताकि पंजाबी एक्सेंट वो सीख सके और बोल सके। कह देना कि किस्मत में कुछ अच्छा होना लिखा होता है तो होकर ही रहता है। आमिर खान से पहले डीजे का रोल शाहरुख खान को ऑफर किया गया था पर शाहरुख खान ने मना कर दिया। उसके बाद शाहरुख खान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ वाले रोल को करने की इच्छा जाहिर की पर बिजी शेड्यूल के कारण वो इस रोल को भी नहीं कर पाए और ये रोल आर माधवन के हिस्से में चला गया और इस कैमियो रोल ने माधवन के करियर को बदल कर रख दिया। फिल्म के गानों की बात करें तो इस फिल्म का वो गाना तू बिन बताए ले चल कहीं, ओ आई लाइक इट, बहुत ही बढ़िया है। मधुश्री नरेश अय्यर की आवाज और जो गहराई, जो डेप्थ है उनकी आवाज में और इस गाने में, वो कमाल है, काबिले तारीफ है। इस रोल में सुहा अली खान है, सुहा को तो आप जानते हैं, शर्मिला टैगोर की बेटी है वो और सैफ अली खान की बहन है। पर पहले ये रोल भी प्रीति जिंटा को ऑफर किया गया था पर प्रीति जिंटा ने साफ मना कर दिया और ये रोल मिला सुहा अली खान को और ये उनकी चुनिंदा हिट फिल्मों में से एक है। तो एक काम करते हैं, रंग दे बसंती कर लेते हैं, क्या बोलते हैं आप? सुंदर ये रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ। आपकी कुछ यादें अगर इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं या ऐसी कुछ घटनाएं जो हमारी इन बातों से आपको याद आ रही हैं, हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। भाई ये यादों का कारवां है, अकेले हमसे ना हो पाएगा, आपकी यादें हमें चाहिए, तभी तो ये कारवां आगे बढ़ेगा।

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा।
3: हाँ जी जी।
2: आधा केजी मसूर दाल।
3: जी जी।
2: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
3: जी जी।
2: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
2: क्या जी?
3: जी जी, GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

वेलकम बैक, मैं हूं समर रेडियो मजी 24/7 लाइव पर। यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो स्टेशन जहां पर मैं आपसे मुखातिब हूं अपने शो यादों का कारवां के जरिए। मैंने जिक्र किया था कि एक फिल्म थी जो शोएब अख्तर को ऑफर की गई थी, नाम था उसका गैंगस्टर। शाइनी आहूजा वाला रोल पहले शोएब अख्तर को ऑफर किया गया था। ऐसी एक और फिल्म थी जो पहले वसीम अकरम को ऑफर की गई थी। जानते हैं वो फिल्म कौन सी थी? नहीं, बताता हूं मैं। और ये रोल बाद में किसने प्ले किया? एनी गेसेस? इरफान खान ने। अभी हिंट दिया, कोई बताएगा कौन सी फिल्म थी? नहीं, चलिए अब मैं बता देता हूँ। इस फिल्म में गाना था, खूबसूरत है वो इतना कि कहा नहीं जाए, उदित नारायण की आवाज में। नीलेश मिश्रा ने ये गाना लिखा था, एमएम क्रीम का म्यूजिक था। बताइए कौन सी थी ये फिल्म? यू गेस इट राइट, रोग की बात कर रहा हूं मैं। रोग हिमांशु ब्रह्म भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म जिसमें इरफान खान और फेमस मॉडल एलिन हेमन ने मुख्य किरदार निभाए थे। दरअसल ये फिल्म हॉलीवुड मूवी लॉरा का रीमेक थी और इस फिल्म में जिस लड़की का मर्डर होता है उसी से पुलिस इंस्पेक्टर को प्यार हो जाता है। यूं तो इरफान खान ने बहुत अलग हटकर रोल प्ले किए हैं, पर इस फिल्म में निभाई गई पुलिस अधिकारी की भूमिका बहुत अलग थी। इस फिल्म का हर गाना अपने आप में क्लास है, बल्कि यूं कहूं कि संजीदगी से भरपूर है। अब कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि अगर इरफान खान वाला रोल वसीम अकरम करते तो क्या इतनी गहराई से कर पाते। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन इवन, आई डोंट नो, शायद कर पाते। डायरेक्टर की नजर है, जो वो देखता है वो हम नहीं देख पाते। वैसे इस फिल्म का केके की आवाज में गाया गया गाना मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी बहुत ही हार्ट टचिंग है। तो एक काम करते हैं, कुछ गाने सुन लेते हैं इस फिल्म से। वैसे गाना सईद कादरी साहब ने लिखा है और इन गानों के साथ ही मुझे इजाजत भी दे दीजिएगा, आपसे फिर मुखातिब होऊंगा मैं एक और शो के जरिए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

तेरी सरकार बना दू, टेबल को तेरी बार बना दू, वैसे तो हूँ बादशाह मैं आज रात तुझे।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। Mosti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Renuka! Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than life. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh Mehra.
7: So final hai, kabhi I love you nahi bolna hai, right?
8: Right.
7: Cool. वैसे never say I love you को French में कैसे बोलते?
8: Nadie jamais je t'aime.
7: Nadie jamais je t'aime. Ah, that's so sexy.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: 11 और फिर 12, 12 मई जी हाँ बिल्कुल जा चुकी है और 12 जून आ चुकी है। कुछ भी रेडियो मस्ती 24/7 पर ये है आपका और हमारा सबसे फेवरेट शो। आप कहे ना कहे हम तो बोल ही देंगे।
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे,
2: बेबी बूम नहीं बेबी सुनामी।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस।
0: वाह वाह वाह, सुबह सुबह ज्ञान बांटते हुए ये आदमी और वो आवाजें हमारी रेडियो मस्ती 24/7 पर। स्वागत स्वागत।
5: उन्होंने देखा सामने कुछ एंड इट इज लाइक सच अ फ्राइडे थिंग। ओके, वी जस्ट यहाँ पे वी अराइव एंड वी स्टार्ट टॉकिंग एंड समटाइम्स इट एक्चुअली डजंट मेक सेंस टू अस आल्सो कि हम बात क्या कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वी विल गेट द हैंग ऑफ इट।
0: बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो भाई ऐसा है कि जैसा हमारा सुबह सुबह गाना चला, सोचा है किसी ने नहीं सोचा, इस शो पर सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस शो पर हम जो बातें बताते हैं वो आप उस टाइम सोच नहीं सकते और बाद में सोचते रहते हैं। क्यों भाई, है कि नहीं अंतरा?
5: True, true, agree, agree. वैसे सारी अतरंगी खबरें इकट्ठा करके हम लोग वापस से यहाँ पर आ चुके हैं, so brace yourself.
0: बिल्कुल brace yourselves, क्योंकि आज की खबरें भी बहुत ज्यादा ताजा ताजा और साथ ही साथ में हैरान करने वाली होंगी। दिस इज मस्ती मैडनेस, 12 जून वाला मस्ती मैडनेस। और अगर आप ऑनकोर सुन रहे हैं तो 5:00 कुछ ही मिनट हुए हैं और आप 13 जून है ना, है कि नहीं? सैटरडे अंकर, हाँ ओके
5: बिल्कुल मिल गए इनको सारे ब्राउनी पॉइंट्स
0: सारे।
6: आज की रात मजा हुस्न का,
0: तो आज की रात मजा हुस्न का लेने को तैयार हो जाइए, वीकेंड आने वाला है।
6: आज की रात
0: दिस इज मस्ती मैडनेस विद रेणुका एंड अंतरा ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: पाल पोस के किसी को बड़ा करो, लगता है कि अब तो ये इंसान हमारे लिए फेथफुल हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: ऐसा लग रहा है बागवा करती हुई एंटर की हुई है।
4: पाल पोस के लिए बड़ा क्या?
1: सच में तुम सोचो, पुलिस ने, मेक्सिको की बात हो रही है, ब्राजील की बात हो रही है, तो पुलिस ने क्या किया था कि भाई एक जगह से उन्होंने एक पैरट को बचाया था, ठीक है, कहीं पर कोई छापा हुआ मारा, वहां पर ये पैरट बेचारा वहां पकड़ा गया। एक्चुअली ड्रग डीलर्स के पास था ये पैरट, ठीक है, तो इन्होंने कहा चलो अब हम इसको अपने पास ले जाते हैं, इसको ट्रेन करेंगे, यू नो मे बी ही विल टेल अस मोर अबाउट वहां क्या होता था ड्रग डीलर्स के वहां पर, और हम पकड़ पाएंगे, यू नो लाइक दैट। अब हुआ ये, इन्होंने अपने आप पास तो रख लिया, और जब भी ये ड्रग डीलर्स के छापे मारने जाते थे तो इस पैरट को साथ लेके जाते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो पैरट है जिसको इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, वो ऑलरेडी ट्रेंड था पुलिस को देख के चीखने में, पुलिस आ गई, ठीक है। And he used to do that in Portuguese. अब प्रॉब्लम ये है, जितनी बार पुलिस उसको लेके पास में जाए कहीं भी और छापा मारने लगे, ये दूर से चीखने लगे पुलिस आ गई, ठीक है। अब ना पुलिस इसका क्या, इसका मुंह बंद करे, मतलब करे तो हम क्या करें, ये तो हमारा हो ही ना पाया, हमसे खाता पीता और फिर जाके उनको शोर मचा देता है। चलो फिर भी किसी तरीके से इन्होंने कुछ पकड़ा और पैरट को दोबारा से वापस स्टेशन लाके और उसको क्वेश्चनिंग के लिए रखा। अब अब मैं कहूं कि भाई ह्यूमंस एनिमल्स सबका एक बहुत बड़ा राइट होता है, द फिफ्थ अमेंडमेंट राइट, जो कि हम कहते हैं इफ यू प्लीड द फिफ्थ देन द पुलिस कैन नॉट फोर्स यू टू से एनीथिंग। सो पैरट का जो लॉयर है उसने बोला आवर पैरट वुड लाइक टू प्लीड द फिफ्थ, तो अब पुलिस उससे कुछ निकाल भी नहीं पा रही है, मतलब क्या लगा क्यों है टंटा।
3: मैं तो कभी कभी सोचते बेचारे पुलिस वालों का, मतलब ठीक है हम लोग ना कभी भी ऐसा एकदम रैंट कर जाते हैं, बट उनका भी सोचना चाहिए, कैसी कैसी चीजों से उनके पाले पड़ते रहते हैं, मतलब आउट ऑफ द ब्लू अब हमें पैरेट से पूछना पड़ेगा कि बता दे भाई।
2: दिस इज समथिंग।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई मैं तो मतलब अब तो कॉस्को जाने का कुछ ऐसा मन सा हो रहा है, जहां पर भी हो बाय द वे आपको भी जाना चाहिए, बड़े अच्छे डील्स चल रहे हैं वहां पर।
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: कॉस्को मतलब याद आया कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन बड़ा ही मजाक उड़ा रहा था कॉस्को का, कहता है कि भैया किसी ने बोला उनका गैराज का दरवाजा खुला अमेरिका में और वहां पर ना मिनरल वाटर के पूरे कार्टन के कार्टन पड़े हुए थे, तो उनको मैंने देख के बोला कि तुमने कॉस्को खुला हुआ है यहीं पर क्या, मतलब क्या है क्या ये, तो वो कहते हैं नहीं नहीं कैलिफोर्निया में ना ड्राउट हो गया था। उसने कहा मुझे समझ आ रहा है क्यों हो गया था, यहाँ पड़ा सारा पानी। तो आई बिलीव वाकई प्रमोशंस बड़े सॉलिड होते हैं। हाँ तो तुम्हारी क्या खबर है?
2: लाइक सीरियसली, सो फ्लोरिडा की ये बंदी जो है ये कॉस्को में एंटर की एंड एंटर करके इसने जो है कहीं से तो इंतजाम किया कि भाई शी इज बेकिंग वेयरिंग दिस फेक

0: एम्प्लॉय का बैज एंड जाके वो जो सैंपल स्टेशन होते हैं ना उनमें से एक स्टेशन पे जाके खड़ी हो गई. अब इसने किया क्या, वही इंटरेस्टिंग चीज है. She started handing out these small tequila ke samples, condiment ke cups mein sabko. She is working for the store. ठीक है. She paired the drinks iske frozen appetizers ke saath and इसने वहां पे लगा दिया ये दिस इज कम्युनिटी टेस्टिंग एक्सपीरियंस. फिर जब ये पकड़ी गई और पुलिस लेके गई इसको कि तुमने जो है ये सारी चीजें क्यों की, तो कह दी है टू सेलिब्रेट द वीकेंड.
1: इसी बात पर गाना अगला हमारा क्या है, सैटरडे सैटरडे. एंड फिर पकड़ी गई, अंदर गई,
0: पकड़ी गई. बट द पीपल जिस दिन ये इसने सारा चीज किया सियापा, जो जो वहां पे उस दिन शॉपिंग करने पहुंचे उनका जब बाद में वो ये कहते हैं कि हमें तो लगा था कि इट वाज अ न्यू मेंबरशिप पर्क. We were really happy कि मतलब Costco has sort something
1: दिन में टून करा रहा है सबको शराबे पिला के too much.

0: चलो इसी बारे में बात करते हैं। अंतरा रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है। गाना जो कि इस टाइम आप सुन रहे थे 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 एंड व्हेन आई ब्लो अप आई टेल यू
1: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है And when you know Renuka for a very very good long time, you actually can see कि बस कब कब आने वाला है यहाँ पर and yeah you kind of yeah you just don't want to see
0: no we don't want to see because वो कम होता है लेकिन जब होता है तो बहुत ही घटिया होता है और वो मैं अपने अपने दिमाग के प्रेशर कुकर की बात कर रही हूँ ठीक है so मतलब बहुत सहता है वो सीटी जो है और वो जो विसल है वो बड़े टाइम के बाद बजती है स्टीम इकट्ठा होता है होता है होता है होता है धीरे धीरे वो होता नहीं है विसल ऐसे निकलती है फिस फिर बंद हो जाती है फिर
1: हाँ वो द फिस वाला जो सेक्शन है दैट इज व्हेन व्हाट रेणुका इज थिंकिंग इन माइंड इट्स ऑन हर फेस विद सबटाइटल्स रीड इट
0: सो अभी आप लोगों को बड़े दिनों से हम कह रहे हैं कि भाई बैकग्राउंड में अगर नॉइज आए तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज रेनोवेशन गोइंग ऑन इन द बिल्डिंग एंड यू नो अराउंड द स्टूडियो ऑल्दो वी ट्राई आवर बेस्ट कि ऐसा कुछ नहीं शोर आए लेकिन अभी भी शायद आ रहा होगा आपको पीछे से अनदर थिंग इज दैट पीपल जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड एंड यहाँ के जो ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन वो सब अब मेरे को जानते हैं अच्छे से ठीक है अब जब भी मैं फोन करती हूँ उन्हें कि भाई शोर आ रहा है और हमारा शो चल रहा है तो जवाब आता है कुछ नहीं कोई मेरा फोन नहीं उठाता ठीक है लेकिन मैं जब मैसेज लिखती हूँ और मैं कहती हूँ कैन यू प्लीज लेट अस वर्क तो फिर ऐसे आवाज आता है वी हैव सेंट अ रिमाइंडर एंड इट विल नॉट हैपन अगेन तो तुम फोन उठाते क्यों नहीं हो मेरा क्यों नहीं उठाते तुम मेरा फोन पूछो जरा
1: क्योंकि पता है ना उनको यहाँ से फोन उठाने पे ऐसे जो झाड़ पड़ने वाली हो ना उनको मतलब दे आर नॉट दे नो इट
0: ऐसे घुमा के लगाने का मन करता है ना कभी कभी सुनते नहीं है रेडियो मस्ती 24/7 पर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद क्योंकि अभी फिलहाल जरा पीछे ठक ठक हो रहा है अगली खबर बताती हूँ आके बताती हूँ
2: रेडियो मस्ती 24/7 डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप
3: Hey, you got what I wanted, Sony, yeah.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
3: 3, 2, 1।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: आइए आइए जी हाँ, तो प्यार होता कई बार है, तू झूठी मैं मकार, उफ क्या गाना है और क्या मतलब मूवी का नाम है, मजा ही आ गया।
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिक
0: खबरों के लिए। यहाँ पर अंतरा जी, आप क्या कर रही हैं, किस किस किस थॉट्स में आप?
1: इतनी घटिया मूवी थी ये, इतनी ज्यादा मैं इतनी स्टार्ड हो रखी हूँ इस मूवी से। मैं इसको हॉल में देखने गई थी अपनी मम्मी के साथ।
0: हाँ।
1: मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो बर्बाद किया है ना इस मूवी ने, फिर उसके बाद मुझे लगा कि देखो शक्ल मत दिखाना अपनी ऐसी मूवी के साथ।
0: अब तो मुझे सच में लगता है सिर्फ द से अगर नाम शुरू हो ना फिल्म का, धुरंधर हो या दृश्यम हो, उसके अलावा कोई मत देखो जाके हॉल में। एनीवे, कमिंग टू दिस न्यूज़, द से दिल्ली, और दिल्ली में एक आदमी, उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी से मिलवाया हाल ही में, बोला कि देखो ये जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वाइफ को बोला, और ये तुम्हारा काम जो है ना घर का वर्कलोड में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, तो इसको घर में रख लेते हैं। हाँ, एंड देन द वाइफ सरप्राइजिंगली शी एग्रीड एंड देन एवरीथिंग वेंट ऑन सोशल मीडिया। जी, तो किसी ने ये कहा कि ये तो मॉडर्न सॉल्यूशन है, मतलब फ्रैंकली बड़ा अनकन्वेंशनल है, लेकिन आप देखो ना घर का काम भी बढ़ जाएगा और उसके अलावा आप ये देखिए कि आराम से प्यार प्यार से रह लेंगे, पैसे वैसे भी नहीं देने पड़ेंगे काम करने के। तुझे क्या लगता है अंतरा?
1: वाह, क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन है ब्रो, लाइक सीरियसली। और आई एम थिंकिंग कि भाई सच्ची में सोसाइटी जो है काफी ओपन माइंडेड होती हुई जा रही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं भाई, जब तक सारे ऑल इन्वॉल्व्ड पार्टीज आर हैप्पी, है ना, क्या कहते हो रेणुका?
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा, हम तो भाई देखो ना, वो चार आदमी है, चार लोग हैं, वो चार लोग कुछ तो बोलेंगे ही, तो एक छोटी सी बात बोली कि देख भाई छोटा सा, हम तो भाई देखो ना, वो चार आदमी है, चार लोग हैं, वो चार लोग कुछ तो बोलेंगे ही, तो एक छोटी सी बात बोली कि देख भाई शादी एक ट्रांजैक्शनल सर्विस नहीं है जैसा वो हस्बैंड ट्रीट कर रहा है, वो बाहर से गर्लफ्रेंड लाता है काम करने के लिए, जेंडर देखो जरा, हाँ कि लड़की ही काम कर सकती है घर का, खुद क्यों नहीं हेल्प कर लेता, खुद क्यों नहीं हेल्प करता घर का, घर तो उसका भी है ना भाई, तू किसकी साइड है?
1: मैं तो आई एम फॉरएवर बंदी की साइड हूँ, मैं तो
0: परफेक्ट,
1: मैं तो कभी भी उस तरफ कभी भी
0: like, कौन सी बंदी, गर्लफ्रेंड की साइड?
1: ना ना, बीवी की साइड। तू डिसाइड कर, तेरे को क्या करना है, दोनों से काम करवा,
0: बस
1: दोनों से करा।
0: अरे दोनों को बैठना चाहिए, उससे कराना चाहिए काम मेरे हिसाब से।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: अगले घंटे में यानी कि दूसरे घंटे में एंट्री करते हुए घुसते हुए ये है मस्ती मैडनेस।
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है
2: गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए बिल्कुल सही जगह पर आप पहुंचे हैं। फ्राइडे का मॉर्निंग है और फ्राइडे की मॉर्निंग में मतलब और क्या चाहिए, यू जस्ट नीड समथिंग टू गेट इनटू द वीकेंड इन अ फन वे राइट
0: गाइस। जितने भी लाइक कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स इफ यू आर वन ऑफ देम I have this one, मतलब क्या मिल रहा है आपको अपने घर। There are a lot of people, रेणुका आपने भी देखा होगा कि these guys they give you a tour of the house and दिखाते हैं आज मैंने ये कर लिया and ये वो कर लिया। But in today's time सिर्फ नॉर्मल लोग जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, चोर उचक्के वो भी देख रहे हैं कि तुम्हारे घर में तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो और मतलब पूरा यू आर काइंड ऑफ गिविंग इट अवे
2: एग्जैक्टली
0: एंड दैट टू ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो भाई ये जो हमारी यूट्यूबर है इनका नाम है रचना गुर्जर, ठीक है, शिवपुरी से है ये। अब क्या हुआ कि इनका कंटेंट क्या है कि ये साड़ी पहनकर बैठती हैं और कोई इधर से वीडियो ले रहा है एंड इन्होंने डिस्प्ले कर रखे टेबल पे अपने सारे सोने के गहने एंड देन शी टॉक्स अबाउट इट कि ये मैंने यहाँ पे लिया, ये मैंने वहां पे लिया एंड ऑल दीज सोना का गहना इज लाइक आउट देयर। सो भाई ऐसा हो गया अपना गोल्ड कलेक्शन ऑनलाइन करते हुए अपने होम लेआउट के साथ इन्होंने किया, तो भाई जिसका डर था वही हुआ, जो थी जो चोर है उन्होंने इनका फुल ऑन स्ट्रेटजी के साथ घर में डाका डाला, कैश तो कैश गोल्ड तो गोल्ड, साथ में जो इनके फ्रिज में एनर्जी ड्रिंक्स दिखे थे इनको
2: वो भी
0: लेके,
2: शाबाश, मतलब हेल्दी वाले चोर थे ये बात तो पक्की है। वही हम कहते हैं कि सोशल मीडिया हैज बिकम लाइक यू नो द गेटवे द डोर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें दूसरे आदमी के इंटरेस्ट, तुम्हें दूसरे आदमी के आना जाना, रिश्तेदार, भाई बहन, हर चीज पता लग जाती है और फिर तुम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो कि बच्चा हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, यू नो, एंड वी कैन टेल यू योर फ्यूचर। और फ्यूचर क्या होता है कि हम उसी बात का फायदा उठाएंगे। बट सीरियसली इसीलिए AI से भी मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि जो बची कुछ ही चीज है वो हम AI को बता देते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं। हो गया सब बराबर।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: रेडियो मस्ती 24/7 पर लव यू जिंदगी
1: क्रेजी दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो।
0: हमें दुनिया क्रेजी बोलती है, पर कभी किसी ने ये देखा है जो अभी अभी क्रेजी हरकत ये हनीमून पर पति जी ने करी है? क्यों अंतरा?
2: बड़े दिनों बाद खबर चुराते हुए रेणुका फुल ऑन एकदम कॉन्फिडेंस में यहाँ पर। आई नो
0: हनीमून साथ में बात करते हैं इसके बारे में। सो ये हनीमून, भाई आप देखिए हनीमून पे बंदा जाता है, हनीमून साथ में हनी मून देखेंगे, राइट? अब भाई ऐसा है कि न्यूली मैरिड कपल टाइम इकट्ठा करो, स्पेंड बॉन्ड करो, अलग अलग तरीके से बॉन्ड करो, राइट? और अब यहाँ पर मेरठ से ये जो पति पत्नी वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर पति को लगा कि चलना यार, माँ बाप और सिबलिंग्स को भी ले जाता हूँ, भाई बहन को भी ले जाता हूँ, घूमना फिरना हो जाएगा, परिवार के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ऑब्वियसली द गर्ल हु वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो स्पेंडिंग टाइम विद द हस्बैंड, वहां पर होगी लड़ाइयाँ और शादी वादी छोड़ो, अब तो सीधा फैमिली काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। लेकिन अटेम्प्ट्स जितने भी कर लो रिकंसिलेशन के, अभी तक तो कुछ नहीं हो पा रहा। बट अंतरा यू टेल मी, क्या सोच रहा था ये आदमी, क्या सोच रहा था?
2: मुझे तो सीन याद आ गया, मेरे अंदर का 90s बाहर आ गया
0: है ना।
2: रामपुर चले,
0: सीरियसली आई टेल यू, बट आई जस्ट फील, क्योंकि भाई लड़की ने तो ये सोचा था कि हनीमून होगा, प्राइवेट गेटअवे होगा, न्यूलीवेड्स होंगे, आपस में जानेंगे, थोड़ा घूमेंगे, मजा आएगा, शॉपिंग करेंगे। लेकिन पति कहता है मैं चाह रहा था कि सब खुश रहें। मैं पति बहुत अच्छा आदमी है, चाहता है कि सब खुश रहें, लेकिन उसी टाइम खुश रहें, मतलब है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस।
2: आई थिंक जिंदगी लाइफ के जो लेसंस है ना, वो कभी कभी बड़े डिफिकल्ट तरीकों से लोगों को समझ में आते हैं, और इसकी जिंदगी में वो डिफिकल्ट टाइम आ चुका है। आई एम श्योर दैट ही विल लर्न दिस लेसन।
0: और प्रॉब्लम सारी ये है कि ये सारा कुछ होने के बाद में ना लड़की को ब्लेम कर दिया जाएगा, है ना, कि देखो काउंसलिंग पे भी जा रही है लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं है, ग्रेजुएट लड़की क्या ले आए हैं, मतलब उसने तो हमसे घर से तुड़वा रही है, वो है ना वो काम शुरू।
2: हाँ, वो तो मतलब ये तो मतलब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ये तो कहना ही है। लाइक अब तो आई थिंक लड़कियों ने भी मान गया कि यार बोल दो,
0: हाँ
2: यही बोलना है, वही पुराने पिछड़े डायलॉग तुम्हारे, अभी तक वो चेंज इवॉल्व तो हुए नहीं है, जो सोचना है सोचो।
0: और हम यही सोच के शादी करते हैं, हम कैसे तोड़े, हमें तो कुछ और आता ही नहीं है। हमें तो जिंदगी में और कुछ।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime anywhere.

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: और आपने भेजा कि नहीं हमें टेक्स्ट अभी तक 9151-8963 फॉर द लायन सिटी चैलेंज. जी हाँ बिल्कुल.
4: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है गैस क्रोनोमिक,
3: लेकिन इस वाली खबर में कोई गैस नहीं है, ये सच है बिल्कुल. क्यों अंतरा?
4: Absolutely right, भाई. ये जो है इतनी इतनी बार बोल चुके हैं और जब मौका हाथ से निकल जाता है ना तो हमेशा तभी सबको याद आता है कि अरे हम कह रहे हैं. एंड देर आर सो मेनी टाइम्स वी रैंडमली शोज में हम आपसे जनरली यू नो सवाल जवाब करते हैं एंड यू आर लाइक राइट आउट देयर कि अरे इसका जवाब तो ये, इसका जवाब तो ये है. हम कह रहे हैं कि ऑफकोर्स ये जो एक वन ऑफ अ काइंड गेम शो हम आपके लिए ला रहे हैं, दिस इज दैट मौका वेन यू कैन फ्लेक्स कि आपको कितना पता है.
3: बिल्कुल
4: अच्छे से पता है.
3: बिल्कुल. और सिंगापुर ने कभी ऐसा गेम शो देखा नहीं है कि कोई आकर हॉट सीट पर बैठता है और फिर उसके आसपास कैमरास होते हैं और फिर उससे सवाल पूछा जाता है और फिर तालियां बजती हैं और बहुत कुछ होता है और आप जीतते हैं. सो वेल ऑफकोर्स यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना है कि हमें व्हाट्सएप भेजना है. आपको मिलेंगे दो सवाल. उन सवालों का जवाब अगर आपने सही दिया है तो आप जाएंगे दूसरे राउंड में और दूसरा राउंड होगा प्रॉपर शूटिंग इन द स्टूडियो जहाँ पर आप आएंगे और आप खेलेंगे वो वाली गेम. And of course, आप जीतेंगे. You will win cash, you will win prizes, and you will have a lot of fun above everything else. क्यों अंतरा है कि नहीं?
4: भाई, I think winning is the thing. Okay? मैं भी try करना चाहती हूँ, लेकिन कोई नहीं. आप हमसे भी मिल लेना वहाँ पे. But then that is the thing that it is going to be just quite amazing. आपको ऐसी feel आएगी ना कि अलग ही level हो जाएगा. So Lion City Challenge, it's the smartest game show in Singapore, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ knowledge की जीत होगी and आप जीत सकते हो.
3: बिल्कुल एब्सोल्युटली. और आपको पता है कि मस्ती में और कुछ हो ना हो, यू विल डेफिनेटली रीच द लाइमलाइट एंड यू विल हैव ब्रैगिंग राइट्स, जिसे कहते हैं ना, जा जाके अरे तुम लायन सिटी चैलेंज पर नहीं गए, हम तो गए हैं. तो कम ऑन गाइज, बी अ स्पॉट एंड राइट टू अस राइट अवे. लिखिए लायन एंड सेंड योर व्हाट्सएप टू 9151-8963. सी यू देयर.
5: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: रेडियो मस्ती 347 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7.

0: 7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
1: Good morning!
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: बाप रे, क्या क्या चीजें लोग सोच लेते हैं, कैसे कैसे क्या मतलब. एंड दैट इज व्हाई ये शो इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इन सब के बारे में बात कर सके.
2: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
3: Musti Madness है, Radio Musti 24/7 है. जी हाँ, और इस टाइम आप हैं, हम हैं, और अगली हमारी अमेजिंग सी खबर है जो अंतरा जी बताएंगी आपको.
1: भाई, क्लेयर हॉब्सन करके यूके की एक परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट जो है वो है. अब क्या हुआ कि शी लॉस्ट अपना जो है कुत्ता, वाज अ टेरियर, ठीक है. एंड मतलब 20 साल से वो कुत्ता उनके साथ था. सो ऑब्वियसली द कनेक्शन वाज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड उनको बहुत ही फील हुआ होगा. माय होल हार्ट गोज आउट टू हर. बट जब वो गई टू पिक अप हिज एशेस, उन्होंने जो है बहुत ही कुछ यूनिक किया. इन्होंने बुक किया अपॉइंटमेंट टू गेट हर आईलाइनर टैटूड.
3: ओके,
1: गर्ल्स यू नो थिंग्स यू कैन गेट डन नाउअडेज. सो ये जो टाइमिंग है, जस्ट गिव हर दिस आइडिया, जहाँ पे शी आस्क्ड हर कलीग टू मिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कुत्ते के एशेस डायरेक्टली इनटू द सेमी परमानेंट आईलाइनर इंक बिफोर टैटूइंग इट.
3: अच्छा.
1: Yeah, and she said so that he could still see the world through her eyes.
3: क्या बात है, क्या बात है, मतलब क्या बात.
4: ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल.
3: पर पता है क्या, वो जो टैटू है वो थोड़े टाइम में तो चला जाएगा, फिर क्या होगा, क्योंकि ये तो
1: I have no idea. मतलब there are खबरें जहाँ पे I sincerely don't know how to react to this. मतलब ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड हर सेंटिमेंट, बट देन
3: Yeah, on that note, I have a friend whose dog passed away many years ago, and she has still kept the ashes of the dog in a container in her house, and she refuses to let go. So, well, pets के साथ में अलग ही प्यार होता है यार. हम कौन होते हैं जज करने वाले, अपना अपना प्यार दिखाने का तरीका है. ओहो, इंसानों से तो बेटर ही होते हैं ना वो वैसे भी.
1: Good morning. That is true.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: दुनिया में खबरें अजीबो गरीब हैं, तभी तो हम हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7. गाइस, दिस इज मस्ती मैडनेस. और मस्ती मैडनेस की अगली खबर हैरान तो करेगी आपको, एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट.
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: क्या हुआ,
4: कौन सी खबर हैरान नहीं करती है? मस्ती मैडनेस पे वही खबरें आती है जो हैरान कर देती है.
2: सही फरमाया आपने. तो भाई 5 साल से इस पति पत्नी की शादी हुई है और दे प्रैक्टिस कॉन्शियस सेलिबसी. मतलब अब आप ये सोचो, इन्होंने जब शादी करी थी दे डिसाइडेड कि देयर विल बी नो सेक्स बिटवीन देम एंड दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट हैव बायोलॉजिकल चिल्ड्रन. लेकिन अगर उनकी बनती गई और वो आपस में रहना चाहे तो आगे जाके बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं. सो वेल, कॉन्शियस सेलिबसी. अब भाई बड़े सारे लोग बोलते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी इज अ पार्ट, इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप एंड स्पेशली शादी, ये वो, यू नो. सो हाउ कैन यू बी लाइक दैट? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो. तो इनका नाम है संचारी एंड निरंजन सचित, ठीक है. एक कंपनी है जिसका नाम है सोल ग्रो जेन अकेडमी और ये उस कंपनी के ओनर हैं. अब हुआ कुछ ऐसे, किसी ने पूछा क्या हुआ, क्या मतलब व्हाई दिस? तो उन्होंने कहा 5 साल से हम साथ हैं लेकिन हमारा जो ये अरेंजमेंट है फिलहाल इसलिए चल रहा है बिकॉज जो लड़की है शी वॉज हीलिंग फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड अ पेनफुल ब्रेकअप, ठीक है. तो उसके लिए फिजिकल इंटीमेसी डिड नॉट फील सेफ. और निरंजन जो है लड़का, ही वॉज प्रैक्टिसिंग सेलिबसी एज अ डिसिप्लिन, मतलब सेल्फ मास्टरी एंड स्पिरिचुअलिज्म. सो दोनों ने कहा हम ढूंढ ही नहीं रहे थे किसी पार्टनर को, लेकिन हम मिले, हमने एक दूसरे को समझा और फिर फ्रेंडशिप से हमें हो गया प्यार. अब जब प्यार हो गया तो हमें लगा हम दोनों एक दूसरे के साथ सेफ हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जरूरतें हैं पूरी हो रही हैं एंड वी कंटिन्यू टू बी इन लव. तो भाई अगेन विदाउट जजिंग आई वुड से इट इज क्वाइट एन अमेजिंग थिंग, राइट?
4: It is actually very, very nice. And people don't talk about emotional safety too much. But then it's a very, very important aspect of any relationship. आपके खुद के, मतलब जितने भी लोग tuned in हैं, वो खुद के relationship में भी कितना जरूरी होता है वो aspect that and some जब इन दोनों, I think it's a very, very good thing. Very, and it also shows that how much respect these two people have for each other.
2: Absolutely. So on Radio Masti, guys, कुछ गलत नहीं है. जज मत करो, किसी भी खबर को जज मत करो. बस हमसे अगले घंटे मिलो, हम और खबरें देंगे आपको. हमारे सामने जज मत करो. माइक बंद होने के बाद हम भी करेंगे, तुम भी करो.

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature wet and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: एनवायरनमेंट में काम करना कैसा होता है, कैसा?
1: आप बताएं।
2: तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना, तुम्हें क्या पता।
0: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस।
2: मोती दान किए होंगे, मोती तभी मिलते हैं लोगों को अच्छे वाले बॉसेस, मोती दान। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7। अंतरा जब तक कुर्सी से ऊपर उठती है तब तक मैं ही आगे बता देती हूँ क्या चल रहा है।
0: चलो कवर की तरफ चलते हैं सीधा का सीधा। तो क्या हुआ कि भाई ये हमारे जो भाई साहब है, इनका नाम है रायन, ठीक है। रायन जो है अपना काम वाम करके चला गया घर। घर जब गया तो अगले दिन सुबह सुबह इसके पास आया ऑफिस से इसके ईमेल। अब आप, मैं उसको पढ़ के बताती हूँ ईमेल में क्या लिखा हुआ है। अब आप बताएं कि ये मतलब कहाँ का इंसाफ है इस लड़के के साथ, और क्या आप इससे पूरी तरह से एग्री करते हैं। तो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है लीविंग अर्ली यस्टरडे ? फिर रखा है हाय रायन, आई नोटिस्ड यू हेडेड आउट अ लिटिल अर्ली यस्टरडे व्हिच वाज 4:57 PM। व्हाइल वी अप्रिशिएट योर वर्क, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर बीइंग फेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम। टू मेक अप द टाइम डेफिसिट यू कैन ईदर टेक अ स्लाइटली शॉर्टर लंच टुडे और स्टे अंटिल 5:03 PM।
2: ओह माय गॉड, नो।
0: Yeah, we are watching the clock a bit closer moving forward because we are a team. तुम 3 मिनट पहले चले कैसे गए रायन?
2: कितने वेले हैं ये लोग वहां पर रायन के आसपास? 3 मिनट कि तू कम खा ले 3 मिनट लंच में, या तो 3 मिनट एक्स्ट्रा काम कर ले, क्योंकि मतलब सुसु वगैरह जाता है तो भी नोट करते हैं क्या कितनी देर लगा कर आया है? मतलब
0: आइडिया। मैं तो ये सोच रही थी ये पढ़ते हुए, कहा मैं और रेणुका उस दिन फ्राइडे को शो कर रहे थे साथ में, और हम सोच रहे थे कि टॉप 10 का 10 लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर चले जाते।
2: बताना नहीं था।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: DNA. डीएनए टेस्ट कराना ये कोई नई बात नहीं है, डीएनए टेस्ट ही तो कराना है। मतलब दुनिया कराती है डीएनए टेस्ट, है कि नहीं अंतरा जी? कराती है ना डीएनए टेस्ट सारी दुनिया।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
4: आजकल ही मैंने ज्यादा सुना हुआ है, पहले के टाइम पे कहाँ पे ये सारे टेस्टें होती थी। मतलब आजकल है कि बच्चे करा रहे हैं कि नहीं हमें डीएनए टेस्ट कराना है, हमें पता करना है।
2: लेकिन इस औरत की जिद देखो तो, ये बेचारी थोड़ी सी गरीब औरत। अब हुआ ये कि इसकी एक बेटी हुई 2006 में, और 2006 में अब जो औरत है उसने कहा, जब पति ने लांछन लगाने शुरू किए मेरा बच्चा नहीं है एंड ऑल दैट, तो शी सेड तो तू करा लेना डीएनए टेस्ट, ठीक है ना, करा ले, खत्म कर। अब पति कहता है कि मैं करूंगा, टेस्ट कराने को मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन खर्चा तू उठाएगी। अब इसने, औरत ने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो तू ही देगा ना।
4: हाँ पैसे वो उसको देने चाहिए ना, शक उसको है ना। हाँ, औरत को तो शक भी नहीं है,
2: पर बेसिकली उसको शक भी करना था और प्रूव भी नहीं करना था। सो होता है, ऐसे होता है, टॉक्सिक, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो अब इस औरत ने भी क्या किया, 20 साल इसने मेहनत करी, ठीक है, लड़की बड़ी हो गई, एडल्ट हो गई, सब कुछ हो गया, और 20 साल तक इसने पैसे इकट्ठा किए किसी भी तरीके से, और फिर ये पहुंची जाकर कोर्ट रूम में और कहती है बुलाओ उसको पेटर्निटी टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। तो मतलब तू सोच कि जज भी ऐसे हैरान हो गया कि तू क्यों ऐसे कर रही है। उसने बोला नहीं, इसने मेरे पे शक किया और मैं उस शक को बिल्कुल भी सहूंगी नहीं। मैं औरत बलिदान करने को तैयार हूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन डेफिनेटली पेटर्निटी टेस्ट तो होके रहेगा। वाह क्या बात है।
4: Totally appreciate her dedication in doing such things, but then you really have to choose your battles. Haan. And this was not one of them which you would have gone for. But smartly इसको handle किया जा सकता था, but then okay, your choice.
2: नहीं बट ठीक है,
4: your choice.
2: ठीक है, उसके बाद उसने उसे divorce कर दिया और उसको alimony मिली। कहती अब जब हाड़ में प्रूव हो गया ना तेरा बच्चा था, अब तू पैसे दे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Hani Singh.
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: एक औरत थोड़ी देर पहले जिसने इंतजार किया समथिंग टू प्रूव, मैं लाई हूँ एक और औरत. लेट्स टॉक अबाउट इट. मस्ती मैडनेस.
4: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
5: औरत ही औरत की दुश्मन होती है और औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है. आई डोंट नो व्हिच वन इज राइट. रेडियो मस्ती 24/7 पर कंफ्यूज करती हुई ये औरत इस टाइम पर कौन सी खबर है बताओ उस औरत की. बताओ बताओ अंतरा.
3: तो भाई हमारी ये जो ये वाली औरत है तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया कुछ ऐसा. फेसबुक मार्केट प्लेस जो होता है ना, जहाँ पे आप लिस्टिंग्स वगैरह डालते हो, वहाँ पर इन्होंने अपने हस्बैंड को ऑफर करते हुए $1 और बेस्ट ऑफर करके डाल दिया वहाँ पे कि लेके जाओ उसको $1 में लेके जाओ या फिर जो भी बेस्ट ऑफर है.
5: $1 इतना महंगा?
3: हाँ बहुत ही ज़्यादा. But उस लिस्ट तो she got responses also. This thing described the husband as used daily, makes strange noises when asked to do chores, includes emotional baggage at no extra charge, needs occasional software updates as well.
5: ठीक है.
3: तो अब क्या है कि ये पोस्ट हो गया वायरल. 800 और 900 मैसेजेस आए. बात तब आगे और ज्यादा बढ़ गई जब वन इंटरेस्टेड बायर आस्क्ड इफ डिलीवरी वाज अवेलेबल एंड ये जो बंदी है इसने लिखा ओनली इफ यू ब्रिंग अ ट्रेलर. ठीक है. अब लोग उसके साथ साथ, अब हस्बैंड को कैसे पता चला, इसके जो कोवर्कर्स हैं वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं. भाई तू मार्केट प्लेस में बिक रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. इंटरेस्टेड पार्टीज आर कॉलिंग हर एंड यू नो शी इज मेकिंग दीज डील्स एंड एवरीथिंग. कोई मोर अपना ऑफर कर रहा है, कोई दो गोट और एक स्मोकर ऑफर कर रहा है कि ये लेके जाओ अपना हस्बैंड दे दो हमको. एंड या शी इवेंचुअली गॉट अरेस्टेड फॉर डूइंग सो. वो लिस्टिंग हटा दी गई बट दीज लाइक इट वेंट लाइक
5: मतलब हैरानी की बात यह है कि बोली लग रही थी इसके पति की और इसने $1 मांगा था, फिर भी लोग बदले में अपनी भैंस और गाय देने को तैयार थे. $1 नहीं दे रहा था कोई. टॉक अबाउट बटर. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिल्कुल खिलाफ मस्ती मैडनेस पर हम बिल्कुल गलत बात बिल्कुल नहीं सुननी. ये बात रेडियो मस्ती 24/7 पर वापस आते हैं, शादी की बात करते हैं. गुड मॉर्निंग.

0: बिहार चलते हैं। जी हाँ, जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार चलते हैं। अंतरा और मैं तो जा ही रहे हैं, आपको आना है, आप भी आ जाओ।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: क्यों अंतरा, चल रहे हैं?
2: अरे आएंगे आएंगे जरूर, सभी आएंगे, इंटरेस्ट तो सबको है ऐसे वालों में, तो सब आएंगे।
0: तो अब ऐसा है कि नयन श्री कुमारी जो 22 साल की है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, और उनकी कजन राखी कुमारी 23 साल की, ठीक है। अब दोनों इकट्ठा बड़े हुए भाई, बहुत ही प्यार था दोनों बहनों में। फाइनली वो प्यार जो है ना, कुछ ज्यादा ही अलग तरीके का हो गया जब वो दोनों पढ़ाई कर रही थी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन पटना। फिर वो प्यार को रिश्ते में बदलना चाह रही थी दोनों। तो जो नयन श्री कुमारी है 22 साल वाली, उन्होंने पर्सनल बैंक लोन लिया 8 लाख का, ठीक है। और उन्होंने राखी कुमारी के जेंडर एफर्मेशन सर्जरी करा दी पूरी की पूरी। अब राखी कुमारी बन गई राहुल कुमार, और फिर दोनों ने एक ट्रेडिशनल हिंदू सेरेमनी में जाकर लोकल टेंपल पर अपना अपना जो रिश्ता है उसको हमेशा के लिए साकार कर लिया। और एज कंसेंटिंग एडल्ट्स, लोकल अथॉरिटीज ने पूरा रिस्पेक्ट किया है उनका लीगल राइट टू चूज देयर ओन लाइफ पाथ। एंड पब्लिक अटेंशन है, डिबेट है, बहुत कुछ है, इंस्टाग्राम पर है, इधर उधर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हुआ, क्या वो सही हुआ अंतरा जी, या नहीं होना चाहिए था इन बहनों के बीच ये सब? आई फील गुड कमिंग अप।
2: भाई अब क्या ही करोगे, क्या कर रहे हो लड़को यार, मतलब सीरियसली। अब लड़के रेणुका 370 रुपए की बिरयानी के साथ डील मांगेंगे तो अब यही होगा ना उसके बाद, कि भाई तुम छोड़ो परे, तुम रहने ही दो।
0: सही बात,
2: तुम अपना रखो।
0: 370 की बिरयानी के बारे में बात आज शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हमारे बाकी सारे शोज पर तो हम कर ही लेंगे। लेकिन ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, बात ये होती है कि मेरा मानना है कि नॉनवेज लोगों को जानवर इसलिए खाने पड़ते हैं क्योंकि वेजिटेरियन लोग जानवरों का सारा प्लांट्स खा जाते हैं, तो उनके पास कुछ बचता नहीं है, राइट। इसीलिए हमको उनको खाना पड़ता है ना। उसी तरीके से लड़कियों को लड़कियों से शादी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि कोई ढंग का लड़का नहीं बचता, क्या करें फिर। इसमें ये तो मजबूरी है, जिंदगी की मजबूरी है, बिल्कुल।

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है अंधा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है बंदा हो तो

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: आइए आइए वेलकम। और रेडियो मस्ती 24/7 पर बस जाते जाते मैं अंतरा जी से एक छोटी सी रिडल, जो कि मैं हमेशा से चाहती हूँ पूछना, मतलब नो पूछूंगी जरूर। मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है गैस।
3: ओह माय गॉड, ओके या लेट मी पुट माय ब्रेन टू दैट मोड। ओके
2: यू मीन लेट मी पुट माय ब्रेन असाइड बिकॉज दीज आर गोइंग टू नॉट रिक्वायर एनी ब्रेन राइट।
3: Yes.
2: So, एक बात बता, एक इंडियन बच्चा जिसकी डबल चिन है उसे हम क्या बुलाएंगे?
3: I know this.
2: बता बता।
3: चिंटू चिंटू।
2: अगला वाला क्योंकि तुम बंगाली हो, अ बंगाली टेकिंग अ डंप आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम, क्या बोलेंगे हम उनको? पॉटी करने जा रहा है आइसक्रीम खाने के बाद बंगाली, क्या बोलेंगे?
3: नो आइडिया।
2: हाँ गंदास। बस अब मेरा वीकेंड मोड ऑन हो रहा है रेडियो मस्ती 24/7 पर। अंतरा जी चलते हैं, ठीक है, लौट के मिलते हैं आपको। आजकल बाय द वे गाना नंबर एक कौन सा चल रहा था लास्ट वीकेंड पे, पता आपको गाना नंबर एक कौन सा था?
3: मुझे जो मेरे सूत्रों ने बताया था, बीच में आपने उनको टेरराइज किया था किसी एक गाने से, गाना नंबर एक डाल के, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं अंतर तुम्हारा ना तुम्हारा वाला तीन पे डाल दिया है, जाइए सजना अभी भी एक पे ही जा रहा है।
2: ऑफ कोर्स पिछली बार गया था एक पे, अब आज पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन हाँ पिछली बार तो गया था। और वही गाना जो जिससे मतलब मैंने उसको काफी वन पे एक समय पे पहुंचाया था, वो तो नंबर 20 पे ही जाने वाला आज के दिन में, पक्की बात है। ऑन रेडियो मस्ती 24/7, ऐसे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, उन्हीं को एक्सपीरियंस करने के लिए आप जरूर आए शाम को 5 से 8, मिले हमको मस्ती टॉप चार्ट्स पर। माशुका प्लेइंग कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से, और शाम को भी चलेगा ये, कौन से नंबर पे ये मुझे नहीं पता। रेडियो मसी 24/7, टाइम फॉर अस टू से गुडबाय। गुडबाय अंतरा, इट्स द वीकेंड, शाम तक रुकोगी ना?
3: वो टीना बुला रही मुझे।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए, समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट वेरी टाइट।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
0: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping Bolly Entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया, बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और सुन।

देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे।

0: सेक्सी है, एक जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है, फोर्स बगावत है, एक पागलपन है, शहादत है, एक दीवानगी है, फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज, 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा, तो चिल्लाओ।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
2: Hush, hush, hush. Papa sleeping. Papa sleeping.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: चाहिए? आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
2: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
3: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
2: थैंक यू
4: थैंक यू
3: थैंक यू
1: थैंक यू, वी लव यू।
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

यहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: This is Slam

नहीं पूछ है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

वो किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: नशा है। और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है
2: जोश में रहो।
3: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा। और

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत की दास्तान।

0: ना पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.